सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा।

0: निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

इस समस्त संसार के नाते रिश्ते केवल दिखावे के हैं, सच्चा संबंध तो केवल आपसे ही है प्रभु, क्योंकि हे प्रभु केवल आपके ही संबंध से लोक और परलोक में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है।

प्रेम की सिद्धि तो इसी में है जब नेत्रों को कुछ दूसरा दिखाई न दे, कानों में कोई दूसरा स्वर न गूंजे, होठों पर भी केवल वही नाम हो जिसने चित्त और वित्त सब हरण कर लिया हो।

संत वही हैं जो सरल हैं, जिन्हें अपने सुख से पहले समस्त प्राणियों के सुख की चिंता हो और उनके कल्याण की ही परवाह हो।

0: आज के कार्यक्रम वंदना में आपने जिन भक्ति रचनाओं को सुना उन्हें स्वर प्रदान किया, हरिओम शरण नंदिनी शरण, पीनाज मसानी, संध्या मुखर्जी, नीना मेहता और राजेंद्र मेहता, और ये देशभक्ति परक रचना हम सुन रहे थे संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अभी ही पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। प्रस्तुत है मुकुंद माला से पाठ। आलेख और वाचन स्वर उमा गर्ग और पुष्पा अग्निहोत्री का है।
1: प्रियेति भवलुंठन को विदेति

0: मुकुंद।
1: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
0: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्।
1: हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं।
0: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पद

0: भकुत अस्ते।
1: हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
0: भव जलधि गतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्र त्राण भारावृतानां।

भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।

0: हे चित्त, तू ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
1: मुकुंद माला से पाठ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान। आज के प्रसंग को स्वरबद्ध किया है भूपेंद्र सिंह ने और संगीतकार हैं सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरितमानस गान FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 4:10 पर आप सुन सकेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य 2026 के समापन समारोह का सीधा प्रसारण। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सभा का आनंद भी हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 10 बजे से। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये श्रृंखला आप सुन रहे हैं। समय याद रखिए रात्रि 8 बजे से। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय रहेगा वैज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन में अधिकतम लाभ। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे विजय सिंह नौलखा। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का समय होगा प्रातः 7 बजे का। पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर और प्रातः 9 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सामयिक चर्चा सुन सकेंगे आप प्रातः 9:15 से। कार्यक्रम बाल गोपाल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:30 का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी और पेड़ पौधों से दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण। अनंत का सूत्र ये सुनिएगा वार्ता, वार्ताकार होंगी संतोष देवी। विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा का समय होगा प्रातः 10 बजे का। आज इस पत्रिका में आप सुनेंगे विज्ञान चर्चा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धि का विस्तार या चुनौती, साइबर अपराध से बचाव पर आधारित होगी ये रिपोर्ट आईटी एक्सपर्ट नवीन वार्ष्णेय के द्वारा। ई वेस्ट पॉल्यूशन सुनिएगा एक और रिपोर्ट, विशेषज्ञ होंगी तरुणा जोगेश। श्रृंखला विज्ञान जनकारिणी है के अंतर्गत सुनिएगा परमाणु युग का महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, ब्रह्मांड को नई दृष्टि देने वाला वैज्ञानिक एडविन हबल। संकलन और स्वर होगा चंद्रिका कुमार का। विज्ञान गल्प में आज आप सुनेंगे चांद पर बसा पहला शहर, गल्पकार होंगे अरविंद कुमार। विज्ञान जगत से जुड़ी हुई गतिविधियां भी होंगी आज के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का, संयोजन और प्रस्तुति होगी ओम प्रकाश सिंह की। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय होगा दिन में 11 बजे का। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ सुनिएगा 1:30 पर ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। दोपहर 1:15 पर सुनिएगा देवेंद्र प्रसाद शर्मा की लिखी हुई झलकी साक्षात्कार, प्रस्तुति आर के पोद्दार की होगी। ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे रांझा गायन, कलाकार होंगे भगवान दास अज्ञानी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 का। संध्या 5:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युवाणी। आज की बात का विषय रहेगा विश्व सफाई दिवस और विश्वविद्यालय खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संध्या 6:15 पर आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज काव्य मकरंद, जिसमें आज के कवि होंगे पंडित राकेश कुमार शास्त्री। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:50 का, जिसमें आज चर्चा होगी पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण का रखे ध्यान और मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग। आज इसी कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं अपने पसंदीदा ब्रज लोकगीतों को कार्यक्रम मनभावन के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से अनुप्रसारित और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, वैज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन में अधिकतम लाभ। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।

0: किसान भाइयों, आज हम दुधारू पशुओं से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पशुपालक अपने दुधारू पशुओं के अनावश्यक खर्चों में बचत करके एवं अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त करके ही सर्वाधिक लाभ कमा सकते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पशुपालक अपने पशुओं की प्रजनन क्षमता का भरपूर उपयोग करके ही कर सकते हैं। इसके लिए पशुओं का प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहना अति आवश्यक है, जो कि उचित आहार व्यवस्था, व्यक्तिगत देखरेख तथा कुशल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। पशुओं का सही उम्र पर प्रजनन योग्य हो जाना, कम से कम ब्यांत समय अंतराल, खान पान, गर्मी में आए पशु की पहचान, उचित गर्भाधान व्यवस्था, प्रजनन अभिलेखों को तैयार करना तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करके ही आर्थिक लाभ बढ़ाया जा सकता। डेयरी पशुओं में एक बार ब्याने से लेकर दोबारा ब्याने तक के समय को ब्यांत अंतराल कहते हैं। यह गायों में 12 माह तथा भैंसों में 13 माह का होता है। बहुत अधिक दूध देने वाले पशुओं में 14 महीने तक ठीक है। ब्यांत अंतराल को कम रखकर पशुपालक अपने पशु से प्रतिदिन व पूरे जीवन काल में अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दुधारू पशुओं से पूरे ब्यांत के लाभ का 50% प्रथम 100 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। पशु के जीवन में इन दिनों की बढ़ोतरी के लिए ब्याने के बाद शीघ्र गर्भित होना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब पशु प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहेगा। पशुओं के ब्याने के बाद आहार व्यवस्था समुचित होने पर वह शीघ्र गर्मी में आ जाएगा। ऐसे पशुओं को पहचानने के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन, गायों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, उत्तेजित रहना, योनि में सूजन व श्राव होना। भैंसों में एक दूसरे पर चढ़ने की क्रिया नहीं दिखाई देती, किंतु इसमें डोंका दिखते हैं। डोंका यानी दूध दुहने के बाद भी थनों में दूध बना रहता है। गर्मी में आए पशुओं की पहचान नियमित रूप से सुबह या शाम को करनी चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक पशुओं को समय से गर्भित किया जा सके। अच्छी गर्भित दर पाने के लिए सही समय पर अच्छे वीर्य द्वारा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, FM 102.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुनिए पहला नगमा गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम है भाई भाई। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत मदन मोहन का।

आमिर भाई, कर्नाटकी की आवाज़ में आपने सुना भरथरी फिल्म का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आइए सुनते हैं इसी क्रम में सुरैया की आवाज़ में मिर्जा गालिब फिल्म का ये गीत।

तलत महमूद की आवाज़ में आपने सुना छाया फिल्म का ये गीत। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत सलिल चौधरी का था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

0: गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था रोशन का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।
1: पूरा भावना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ आगरा समेत देश के 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है युवाओं की भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 818 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की है तैयारी। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की दी मंजूरी। और सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, हॉक जेट की कलाबाजियों ने दर्शकों को किया रोमांचित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल लखनऊ और आगरा सहित देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
4: देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट

0: से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं।
1: इसी क्रम में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 167 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए सबकी सहभागिता की आवश्यकता है।
2: हम लोग विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसे सबकी सहभागिता की जरूरत, सबका कोऑपरेशन की जरूरत, सबकी मेहनत की जरूरत है और सबकी सोच की जरूरत है।
1: आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि रोजगार देने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है।
3: 20वें रोजगार मेले में 12,75,000 लोग पहले ही पा चुके हैं और 45 स्थानों पर 51,000 लोगों को विभिन्न विभागों में प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है। और सभी बच्चों से जो मैं बात कर रहा था उसमें सभी लोगों ने यही कहा है कि 100% पारदर्शिता के साथ लिखित के आधार पर बिना इंटरव्यू के उनकी नौकरी लगी है।
1: प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश की युवा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से देश के कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में आए बदलावों के बारे में।
4: प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन एक केंद्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य भारत के कमजोर जनजातीय समूह को विकास से जोड़ना है। यह योजना विकास को आजीविका और आर्थिक अवसरों से भी जोड़ती है। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी दी गई है। योजना के तहत जून 2026 तक 2.67 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं। 8,473 गांव में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के जरिए होने वाला विकास आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर दे रहा है।
0: पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
4: गोरखपुर जनपद के ग्राम जंगल तीनकोनिया के राम गणेश ने बताया कि पीएम जनमन योजना से उसके गांव की तस्वीर बदल गई है।
5: पीएम जनमन योजना के तहत लाभ मिला है जो कि हमारे गांव में कभी न तो पानी मिलता था, न बिजली मिलता था, न तो राशन कार्ड मिलता था, न तो हम लोग को मकान मिलता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें हम लोग को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और बिजली आई।
4: यह योजना कमजोर आदिवासी समुदायों को भारत के विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखती है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के अंतर्गत कल लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न विभागों में नवचयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक 9.5 लाख नौजवानों को नियुक्ति दी है और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं।
6: 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रतिभाशाली युवा जब यूपी की ताकत बनेगा तो यूपी भारत की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। नए अवसर पैदा होंगे हर एक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपना स्थान बनाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। एक रिपोर्ट।
7: रेल मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार

0: करेगी। इससे रेल परिचालन के लिए उपलब्ध सुरक्षा अवसंरचना और मजबूत होगी। कवच देश में ही विकसित स्वचालित रेल संरक्षण प्रणाली का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे परिचालन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली खतरे के बिंदु पर आवश्यकता अनुसार अपने आप ब्रेक लगाकर सिग्नल पार करने से रोकने में सहायता करती है। यह रेल के परिचालन पर निगरानी रखकर सुरक्षित यातायात में सहायक है। इसे परिचालन फीडबैक और स्वतंत्र सुरक्षा आकलनों के आधार पर निरंतर तकनीकी अपग्रेड के माध्यम से विकसित किया गया है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत देवप्रयाग उत्तराखंड से शैक्षिक भ्रमण पर उत्तर प्रदेश आए मेधावी विद्यार्थियों से कल लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे टूर देश प्रदेश समाज विरासत व दुनिया की वस्तु स्थिति जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुभव अत्यंत उपयोगी होते हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ के मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कल एक एयर शो का आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल होने के लिए हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर 9 हॉक जेट विमान मेरठ पहुंचे और प्रदर्शन किया। सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने मेरठ के 3 स्क्वाड्रन लीडर भी शामिल रहे। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ आगरा समेत देश के 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है युवाओं की भूमिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 818 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की है तैयारी। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की दी मंजूरी। और सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरठ में हुआ एयर शो, हॉक की कलाबाजियों ने दर्शकों को किया रोमांचित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबन को खूब खूब स्वागत आपके अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और आज जा कार्यक्रम में आप सुनो हो अपने मनपसंद के लोकगीतन को, जाए हम कहे हैं ब्रज लोक लहरी। तो आज लोक लहरी में कौन कौन से लोकगीत आप सुनोगे, सो बस थोड़ी देर में प्रतीक्षा आपकी समाप्त हो जाएगी और शीघ्र श्रोता जो हम संग जुड़े भए हैं वो आनंद लेवेंगे आज के जा कार्यक्रम को। और भैयाओं, जैसों कि पतो ही आप सबन को कि हमारे ब्रजमंडल में धूम मच रही है राधा रानी के आनंद उत्सव की। जाकी दृगन कटाक्ष सर विंध्यो नंद सुत वीर, मूर्छित है अवनी लुठत पुनि पुनि विकल अधीर। बात तो सांची है, जिस अधरामृत के पान के ताई, जाके दर्शन के ताई, सुंदर श्याम सलोना जो हमारे बांके बिहारी हैं, श्री कृष्ण चंद्र महाराज हैं, वे भी कहे व्याकुल है जाए हैं, ऐसी उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा को जन्म दिवस आराध्य। अपने अपने जो भक्त जन है सबरे अपने अपने हृदय आराध्य की साधना करवे में कल लगे रहे। और जब जन्म को उत्सव है जाए है तो फिर आनंद बधाई बाजे है और सबरे मिलके गावे हैं, चलो वृषभान गोप के द्वार बधाई बाज रही। तो भैया ब्रजमंडल में तो ऐसे धूम मची रहे हैं लगातार, काउदुना कछु तो काउदुना कछु, बस प्रेम भक्ति के रंग में सराबोर रहवे हैं ब्रज के भासी। तो अपने जा कार्यक्रम में आज कौन सो रंग घुलेगो और कौन से रंग के गीतन को, लोकगीतन को आपने पसंद कियो है, आपने संदेशा भेजो है, वो अब जल्दी से पढ़ देवे। तो सबसे पहलो संदेश भेजी बारी हमारे श्रोता हैं हिमांशी आरना, क्रियांश पवन और समस्त परिवारी जन मंडी रामदास मथुरा ते जे, इन्होंने संदेशो भेजो। जाके बाद हमारे श्रोता हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान ते, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी को संदेश। और जे हमारे श्रोता हैं राजनगर ते, फूलो देवी, कुशेश्वर गुप्ता, रागिनी ज्योति, स्वर्णिमा गुप्ता, चुलबुल रानी गुप्ता, मधुबनी लहरियागंज से सुलेखा विजय राणा और स्वाति राणा, विमला किरण, गीता टीपू श्रीवास्तव को जे संदेश शामिल भयो। चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हम संग पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महे, सुनीता रानी, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और समस्त परिवार। जे हमारे श्रोता हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी ते, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। जे हमारे श्रोता हैं अमलदास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश ते, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह, लोकेंद्र प्रताप सिंह, प्रेमाबाई भारतीय, गोपाल, कृष्णा, तनिष्का, अमिता और श्रीमती ललताबाई भारतीय को। न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल ते डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शमनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, भगवान सिंह नायर और ग्राम कजलास पोस्ट गरिया तहसील डोलरिया जिला नर्मदापुरम तेजे श्रोता हैं गोरेलाल निमोदा, मिश्रीबाई और लक्ष्मी निमोदा। जी हमारे श्रोता जुड़ गए हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ ते, कबीर रेडियो श्रोता संघ के सबरे श्रोता देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषारदेव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया और पोता।

मास्टर अल कबीर। और ये हमारे श्रोता हैं राधे श्याम उपाध्याय, राजू लवानिया, अर्पण, संकेत, इन्होंने अपनो पतो तो नहीं लिखो है, कोई बात ना, आपने अपने नाम तो ज़रूर सुन लिए होंगे। और इनके संग ही संग हमारे एक और श्रोता जुड़ गए हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, इनके संग ही संग जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमान, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से। तो भैयाओं सुनवावे हैं आप सबकी पसंद पे जा लोकगीत को। जय स्वर्दीनो है सरस कौल और रमेश रावत ने।

राधे श्री वृषभानु दुलारी। अभी आपने जालोक गीत को सुनो सरस कौल और रमेश रावत के युगल स्वरन में। और अब पढ़े हैं आपके अगले संदेशन को, तो जे संदेश मिलो है अशोक गोला, नितिन प्रशांत गुड्डी, पूनम नेहा और समस्त प्रजापति परिवार को। और इनके संग अगलो संदेश आयो है राजेश राजवर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा को, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश ते। इनके संगे संग जुड़े भए हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ ते स्वर्णकार मुन्ना भाई, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जी। हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ ते, और जी हैं प्रदीप भैया बिरला नगर ग्वालियर ते, पलारी छत्तीसगढ़ ते। जे संदेश आयो है नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन को। जे हमारे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ते, पटेल नगर मलोटते। हमारे श्रोता जुड़े हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू जी। हैं हमारे श्रोता शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से, और सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, सौभाग्यवती जगुताई राजे, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख को संदेशों प्राप्त भयो तालुका जाफराबाद कालेगांव ते। जी हमारे श्रोता हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, डब्बू बब्बू, सुभाष योगी, बबीता मिगलानी, राजू मिगलानी, दुर्गा कॉलोनी हांसी ते हमें जे संदेश भेज रहे हैं। और जी हमारे श्रोता हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, जिला फरांसी, ग्राम फरांसी, जिला हिसार ते, और अनेकों श्रोता लगातार जुड़े भए हैं छत्तीसगढ़ ते जुड़ गए हैं दतरेंगी ते, भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा और बड़िंग खेड़ा पंजाब ते, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवारीजन जी। हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान ते धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार और इनके संगी साथी जी। हमारे श्रोता हैं ग्राम उस पार ते यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, कान्हा, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी, ओमवती और मनोज कुमार को जो संदेशा प्राप्त भयो। और अब हमारे श्रोता जुड़ गए हैं छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, काजल करण, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भाभी, ममता देवी, आरती भारती, काजल करण और समस्त बुंदेलखंड निवासी। तो आओ सुनवावे आपकी पसंद पे माधुरी शर्मा के स्वर में जा लोकगीत को।

संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। अब आई आपने जालो गीत को सुनो माधुरी शर्मा के स्वर में। जय गीत के ताई हमें फरमाइश भेजी हती ऐशबाग लखनऊ ते रानी मुकेश गुप्ता रश्मि नीलम कुसुम और रूपा इलाहाबादी ने। ओल्ड लिसनर्स बिहार जोन रुद्र गुप्ता से हैं रुद्र गुप्ता, अरविंद कुमार, फैशल इमाम, रामदेव पटेल, राजेश भारती और दादा ठाकुर। अब जे संदेश और जुड़ गए हैं हम संग तो नाम पढ़े हैं। जसवंत नगर जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह नैतिक संगीता और इनके समस्त परिवारीजन। जे हमारे श्रोता हैं करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना ते कानुगुला गोपाल माहेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन विघ्नेश और इनके परिवारीजन। जे हमारे श्रोता हैं मलोट पंजाब ते राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा सायना शर्मा और निवान शर्मा को। जे हमारे श्रोता हैं डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ते राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये को। और जे श्रोता हमारे औरंगाबाद वकील की बगीचा कॉलोनी से जुड़ी भई हैं मोहिनी अग्रवाल किशोर कुमार अग्रवाल और इनको समस्त परिवारीजन। जी हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ ते बलकरण वर्मा अंजनी रजमत वर्मा मुरली नीरा वर्मा ज्योति प्रहलाद वर्मा। और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तेंजे संदेश प्राप्त भयो रामशरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा को। तो अब सुने हैं आपके संदेश के आधार पे आपके पसंदीदा जा लोकगीत को। जय स्वर दीनो है डोरीलाल गोला ने।

कि राधे तेरे दर्शन को पावेंगे। दूरी लाल गोला के सुर में अभी आपने सुनो जा लोकगीत को। तो अब हमारे कार्यक्रम को समय समापन की ओर है। आज के कार्यक्रम को यहीं पे अब विराम दे हैं और अगले कार्यक्रम में आपके संदेशन की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के ताई हमें देव आज्ञा स्वीकारो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार मॉर्निंग न्यूज। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और

0: आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे ही जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है, तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में, लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे। हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का यह नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
7: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमेस एंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार। 29 सितंबर को होगा

राम और श्याम। इस फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत था नौशाद का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: रेशमा और शेरा, ये गीत है इस फिल्म का। शब्द रचना जयदेव की है और स्वर लता मंगेशकर का।
1: एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन,

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गैम्बलर से, शब्द रचना नीरज की, संगीत एसडी बर्मन का।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

कुर्बानी फिल्म का ये गीत आपने सुना मनहर और कंचन की आवाज़ों में। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आपने सुना राजा रानी फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर विराम लेता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।

0: राजा रानी फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर विराम लेता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कुछ भजन। स्वर आशु रावत का है। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये पहली भक्ति रचना।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं ये अगला भजन आशुरावत के स्वर में।

उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसी भक्ति रचना के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी ही पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मनीष दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार हैं राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कृषि से संबंधित योजनाओं से कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव और उपलब्धियों पर। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अखिलेश दुबे जी। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सभी को नमस्कार।
1: सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि का आधार माना है। आपके आकलन में उनके नेतृत्व में कृषि नीति की प्राथमिकताओं में किस तरह का बदलाव आया है?
2: देखिए, 2014 के बाद भारत की कृषि नीति में बहुत बड़ा बदलाव और मुख्य रूप से जो नीतियों में बदलाव आया, पहले था कि फसल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का, संस्थाओं का, सभी एजेंसियों का ध्यान केंद्रित रहता था, लेकिन 2014 के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत कम करने के, और बीज से लेके बाजार तक एक समग्र इकोसिस्टम विकसित करने पे सरकार के द्वारा जोर दिया गया और जितनी भी कृषि के विकास में बढ़ावा देने वाली संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक से लेके बैंक तक, सभी लोगों ने जोर दिया कि किसानों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जाए कि जिससे उनका ज्ञान का स्तर बढ़े, उनके स्किल बढ़े, कि वो करके सीखो के आधार पे कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा तथा कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान थे, कि किसानों को प्रैक्टिकल बेस, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया, वैज्ञानिक किसानों के गांव गांव जा करके प्रशिक्षण दिए जिससे किसानों की जो समस्या है उनका फीडबैक प्राप्त कर लें, उसी ढंग से शोध करें क्या तकनीकी अपनाएं कि जिससे लागत कम हो, कीड़े बीमारियों की संख्या कम हो और उनका उत्पादन बढ़े, किसानों को मृदा के स्वास्थ्य में सुधार कैसे लाएं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं, किस पोषक तत्व की कमी है, पोषक तत्व आधारित खेती करें, इसी ढंग से बायो फोर्टिफाइड वेराइटियां जो है वो रिलीज की गई जिससे जो हमारे उत्पादक हैं और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको भी पोषक तत्व अच्छे ढंग से मिले, बाजार मूल्य अच्छा मिले। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिए गए, प्रोत्साहित किया गया और इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग है उसको बढ़ावा दिया गया और जगह जगह एफपीओ के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराए गए कि जिससे किसानों को मैकेनाइज्ड तरीके से खेती कर सकें, उनकी लागत में कमी आए।

0: जिससे उनको मुनाफा हो।
1: सर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए सीधे किसानों के खातों में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। आपके अनुसार इस पहल ने छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक जरूरतों को किस हद तक आसान किया है?
0: देखिए, किसान भाइयों को विशेषकर जब फसल कटाई कर रहे होते हैं उसी समय उनको उर्वरक खरीदने की जरूरत पड़ती है, बीज खरीदने की जरूरत पड़ती है, और विशेषकर जो छोटे किसान है उनको दिक्कत होती है। वो आनंद फानंद में अपना उत्पाद बेच देते थे कम मूल्य दर पे, तो अब इससे क्या है कि 6,000 उनको साल भर में 3 बार 2,000 करके पैसा मिलता है। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास बीज नहीं वो बीज खरीद लेते हैं, जिनके पास खाद का पैसा नहीं वो खाद खरीद लेते हैं, तो उनको बहुत ही लाभ मिला है। और इससे हमारे जो किसान भाई हैं उन छोटे किसानों का जो है उत्पादन बढ़ रहा है, तो कुल मिला के ये पूरे भारतवर्ष के किसानों को इसका फायदा मिला।
1: सर, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय सुरक्षा के लिए पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर जोर दिया है, इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक सुरक्षा में कितना बदलाव आया है?
0: देखिए, फसल बीमा योजना से कि जैसे हमारा जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जो है कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे आंधी तूफान आता है, तो किसान जैसे हम आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई संसाधन रखते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो सरकार ने इसी ढंग से न्यूनतम दर पे अलग अलग फसलों का न्यूनतम दर निर्धारित किया हुआ है, और उससे फसल बीमा होने से किसान आश्वस्त हो जाता है कि अगर उसका खलिहान में मान लीजिए वो मड़ाई कर रहा है और बारिश हो गई, तो तब भी उसको सरकार के द्वारा अगर वो समय से अपना क्लेम निर्धारित करेगा, वह प्रार्थना पत्र देगा, तो उसको सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है वो उसका बीमा क्लेम मिलेगा। इससे किसानों का जोखिम का स्तर जो है वो काफी हद तक कम हुआ है। इसी ढंग से जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आपके पास जितना खेत है उसका एक फार्मर रजिस्ट्री के द्वारा सभी डेटा बैंक बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए किसानों को जो भी उनकी आवश्यकता है फसली सीजन में वो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ले सकते हैं। और इस समय अनुमानतः 7,72,00,000 जो है किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अब किसान भी जैसे व्यापारी बिजनेस करते हैं वो ढंग से वो अपनी खेती में जो है व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: सर, प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबूद अधिक फसल का लक्ष्य रखा है। आपके अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों और विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों को कितना लाभ पहुंचाया है?
0: देखिए, विशेषकर जो हमारी हाई वैल्यू फसलें हैं जिसमें लागत ज्यादा लगती है, और सरकार ने 90% जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना पे अनुदान दे रखा है। सिर्फ अगर 1,00,000 रुपए ड्रिप या स्प्रिंकलर पे लग रहा है तो सिर्फ किसान को 10,000 रुपए ही जमा करना है, 90,000 जो है वो सरकार वहन कर रही है। इसी ढंग से पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, इससे किसानों को लाभ मिल रहा है, और सभी राज्य सरकारों के द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है। अगर वो ड्रिप और सोलर दोनों अपना लिया तो करीब उसकी सिंचाई की जो लागत है वो 80% अपने आप कम हो गई, और साथ ही जो ड्रिप सिस्टम से जो पोषक तत्व देते हैं तो हम रासायनिक जो उर्वरक को जो बिखेर करके छिड़काव करते हैं उसमें भी बचत होती है, तो इससे किसानों को लाभ हो रहा है। और
1: सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से लेकर नीम कोटेड यूरिया तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिट्टी और उर्वरक प्रबंधन पर जोर दिया गया है, इससे खेती की लागत और मिट्टी की गुणवत्ता पर सकारात्मक जो प्रभाव पड़े हैं उस पर कुछ प्रकाश डालिए।
0: देखिए, नीम कोटेड यूरिया से किसानों को लाभ हुआ कि एक तो वो स्लो रिलीज होती है, दूसरा जो काला बाजारी होती थी कि जो इंडस्ट्री में उसका यूज होता था तो वो अपने आप बंद हो गया नीम कोटेड करने से, दूसरा जो यूरिया का प्रभाव 10 दिन 12 दिन तक रहता था अब नीम कोटेड से वो स्लो रिलीज होता है, तो इससे किसानों को कम मात्रा में भी यूरिया डालने की जरूरत है।
1: सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कितनी भूमिका?
0: मृदा का स्वास्थ्य कार्ड जैसे अब मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि अगर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से उर्वरकों का प्रयोग करे, मान लीजिए उसके खेत में फास्फोरस ज्यादा है, पोटास ज्यादा है, तो उसको फिर डालने की जरूरत नहीं है। इसी ढंग से अगर उसके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं या कोई सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है तो उसको डालने की जरूरत है। जैसे आलू के किसान हैं, वो ज्यादा मात्रा में फास्फेटिक फर्टिलाइजर के हो सकते हैं, लेकिन अगर वो संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे

0: तो उससे क्या होगा कि उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका जो पैसा खाद खरीदने में व्यर्थ में लगाते हैं वो पैसा उनका बचेगा और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्योंकि अधिक खाद डालने से ज्यादा उत्पादन नहीं मिलता, बल्कि उल्टे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जमीन पे भी पड़ता है और फसल पे भी पड़ता है।
1: सर, प्रधानमंत्री जी ने कृषि में ड्रोन तकनीक, डिजिटल तकनीक और आधुनिक मशीनरी की बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ये तकनीक छोटे किसानों और सीमांत किसानों या किसानों को कितने हद तक फायदा पहुंचा रही है?
0: देखिए, अब जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या कीटनाशक, फफूंद नाशक डालने के लिए किसान एक एकड़ में इस छिड़काव करने के लिए वो मजदूर ढूंढता था या स्वयं लगता था, फिर पानी ढो के ले जाता था। अब ड्रोन से सिर्फ 10 से 15 मिनट में उसके खेत में छिड़काव हो जाएगा और साथ ही सही मात्रा में पूरी जगह दवा पड़ेगी, कहीं न कम न कहीं ज्यादा। तो इसीलिए सरकार के द्वारा एफपीओ को जगह हर जिले में ड्रोन दीदी दिया जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे लोगों को दिया जा रहा है कि किसानों को आप जागरूक करिए, उनको जानकारी दीजिए। और इसी ढंग से जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, इंडिविजुअल फार्मर्स द्वारा, किसानों के समूह के द्वारा, सोसाइटियों के द्वारा, तो उससे लोगों की जो परेशानियां थी, जैसे अब आप छोटे किसान हैं, अब आपके पास सारे यंत्र नहीं हो सकते, मान लीजिए आपके पास सीड ड्रिल नहीं हो सकता, आपको खेत समतल कराना है तो अब एक लेजर लेवलर करीब 3.5 लाख रुपए का आता है, लेकिन अगर आपके गांव के आसपास उपलब्ध है और किराए पर उपलब्ध है जो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप आसानी से अपने खेत का समतलीकरण किसान भाई करा लेते हैं। तो समतलीकरण कराने से फायदा है कि पानी कम लगता है, एक बराबर जो है मशीनें चलने पे सही ढंग से बीज की बुआई हो जाती है, दवाओं के इस्तेमाल में आसानी हो जाती है कि अगर वो जमीन में दवा डाल रहा है तो पानी के सहारे तो पूरे खेत में फैल जाता है। और डिजिटल जो क्रांति है कि आप देखिए कि किसानों को बहुत सारे जो ऐप हैं उनके माध्यम से उनको जानकारी मिल रही है, जैसे मौसम संबंधी जानकारी है किसानों को घर बैठे मिल रही है कि अगले 2 घंटे में, आपको भी जानकारी आती होगी ऐप के माध्यम से कि 2 घंटे में जगह जगह सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसी ढंग से जो सरकारी योजनाएं हैं वो डिजिटली उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो डिजिटल क्रांति से किसानों को बहुत ही फायदा है। ऑनलाइन जो है किसानों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग सभी जो संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, प्रतिदिन उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो ये सारे फायदे।
1: सर, प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती और टिकाऊ कृषि पर भी जोर दिया है।
0: प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम अच्छा खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, और उसके लिए प्राकृतिक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती का बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 50-50 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अपने फार्म पे प्रदर्शन करके दिखाए जा रहे हैं, उसकी तकनीकी बताई जा रही है और कैसे किसान प्राकृतिक खेती करें उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके प्रोसेसिंग के संबंधित लोगों को उपकरण सब्सिडी पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि आप प्राकृतिक उत्पाद खरीदे, तो इससे ये फायदा है कि एक तो किसान की लागत में कमी आएगी, गौ आधारित खेती करने से एक तो उसको जो रासायनिक खादें खरीदते हैं उसकी बचत होगी, रासायनिक जो दवा खरीदते हैं उसका पैसा बचेगा, और साथ ही जब वो 3-4 साल करेगा तो उसको जितना उपज मिल रही वो उपज उसको मिलेगी और उसका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा, और साथ ही वो जब रसायन मुक्त अन्न ग्रहण करेगा तो वो भी स्वस्थ रहेगा, तो जो हम दवा में इलाज में खर्च करते हैं वो बचेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा।
1: सर, एक आखिरी सवाल कि बीज से बाजार तक की संकल्पना एफपीओ और कृषि आधारित उद्यमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कृषि निवेश में भी बढ़ावा हो रहा है, आने वाले दिनों में इन सारी चीजों का कृषि क्षेत्र में और किसानों की आय बढ़ाने में जो बदलाव दिखाई देगा उस पर प्रकाश?
0: देखिए, सरकार के है कि सभी संस्थाओं का एक साथ समन्वय हो, किसानों को उनको जो भी खेती करना चाहें क्लस्टर आधारित वो खेती करें। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम आत्मनिर्भर हो गए, बहुत सारे जो कृषि उत्पाद हैं उस पर आत्मनिर्भर हैं, तो हम उसको बाहर निर्यात करें। जैसे जब हम क्लस्टर में फार्मिंग करेंगे तो हमारे पास एक गुणवत्ता युक्त जो उत्पाद होगा हम उसको निर्यात करने की स्थिति

0: उससे किसानों को बाजार भाव ज्यादा मिलेगा और सारे संस्थानों के इंटीग्रेशन करने से ही होगा कि किसानों को बार बार हर संस्थान में भागना नहीं पड़ेगा। तो सरकार की प्लानिंग है कि सारी संस्थाएं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, या जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं, वो मिलके किसानों के बीच कार्य करें जिससे किसानों को लाभ मिले। और किसानों से भी मेरी अपील है कि वो बढ़ चढ़ करके आगे आए और सरकार जो चाह रही है कि हमारा जो भारत जो है 2047 तक हम पूरा पूर्ण रूप से विकसित हो, उसमें अपना हर किसान भाई, हर युवा और हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इसमें योगदान करेंगे तो हम 2047 में जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है वो अवश्य पूरा हो।
1: सर, आपने आकाशवाणी के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं को और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की कृषि संबंधित योजनाओं से कृषि क्षेत्र और किसानों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव और उपलब्धियों पर कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के प्रभारी डॉक्टर अखिलेश दुबे से खास बातचीत। वार्ताकार थे राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के मीटर
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का प्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम बाल गोपाल। आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हैं पूनम यादव।

बच्चों जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आप सबको भी। प्यारे बच्चों, वैसे तो ब्रज में हमेशा ही त्योहारों जैसी धूम रहती है, लेकिन सावन के महीने से तो त्योहार जैसे लगातार ही आते जाते हैं और हमसे ज्यादा बच्चे इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अब आने वाले हैं श्राद्ध। लेकिन बच्चों, त्योहारों को मनाने में हमें स्वच्छता का प्रयोग करना चाहिए और आज हमारी चर्चा भी इसी विषय पर है, स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी। बच्चों, स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी समाज में एक बड़े और स्थायी बदलाव की नींव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ, साफ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। किसी भी देश में कोई भी बड़ा सामाजिक आंदोलन जब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें उस देश की युवा पीढ़ी और बच्चे सक्रिय रूप से भाग न लें। बच्चे किसी भी समाज के भविष्य के निर्माता होते हैं। स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी न केवल वर्तमान पर्यावरण को सुधारने में मदद करती है बल्कि एक जिम्मेदार और जागरूक भविष्य की पीढ़ी का निर्माण भी करती है। बच्चे स्वभाव से बहुत कोमल और संवेदनशील और सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उन्हें जो भी सिखाया जाता है वे उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जब बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया जाता है तो वे इसे न केवल एक नियम के रूप में बल्कि अपनी जीवन शैली के हिस्से के रूप में अपनाते हैं। बच्चे अपने घरों, स्कूलों और आस पड़ोस में स्वच्छता के लिए चेंज एजेंट या बदलाव के दूत के रूप में कार्य करते हैं। वे न केवल खुद गंदगी फैलाने से बचते हैं बल्कि अपने माता पिता, भाई बहनों और बड़ों को भी ऐसा करने से टोकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बड़ा व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकता है और कोई बच्चा उसे विनम्रता से मना करता है

उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो बच्चों की बात मान जाते हैं। जो बड़े होते हैं और बच्चे उन्हें बताते हैं तो वो मान भी जाते हैं। स्कूल बच्चों के जीवन का वह केंद्र है जहाँ उनके चरित्र और आदतों का निर्माण होता है। स्वच्छता अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में बड़े पैमानों पर गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। स्वच्छता की शपथ ली जाती है। स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है। इसमें बच्चों में मानसिक रूप से स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। क्लासरूम में और स्कूल परिसर की सफाई, कई स्कूलों में बाल संसद या स्वच्छता मॉनिटर बनाए जाते हैं। ये बच्चे अपनी कक्षा और स्कूल परिसर को साफ रखने की जिम्मेदारी खुद संभालते हैं। इससे उनके नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों में स्वच्छता विषय पर निबंध लेखन, चित्रकला, स्लोगन लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होता है। और इसके अलावा नाटकों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बच्चे बहुत ही रोचक तरीके से स्वच्छता का संदेश समाज तक पहुंचाते हैं। बच्चों द्वारा अपनाई जाने वाली स्वच्छता की आदतें स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी उनके दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों से झलकती हैं। इन आदतों में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कचरे का सही निस्तारण। बच्चे कचरा फेंकते हैं ना, बच्चे अब नीले और हरे डस्टबिन का अंतर समझते हैं। वे सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना सीख रहे हैं। हाथ धोने की आदत, खाना खाने से पहले और शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना बच्चों की आदत का हिस्सा बन चुका है। इससे वे खुद को और अपने परिवार को कई तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाते हैं। प्लास्टिक का कम उपयोग, स्कूलों में बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसानों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे अब कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करने और अपनी पानी की बोतलें साथ रखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। बच्चों, जो कुछ भी स्कूल में सीखते हैं बच्चे, उसे वे अपने घर पर लागू करते हैं। वे अपने माता-पिता को घर का कचरा गली या सड़क पर फेंकने से रोकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पहले खुले में शौच की गंभीर समस्या थी, वहाँ बच्चों ने अपने माता-पिता से घरों में शौचालय बनवाने की जिद की। कई जगहों पर बच्चों की इस सकारात्मक जिद के कारण परिवारों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए, जिससे पूरे गांव की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार भी हुआ। वहाँ बीमारियां कम फैलती हैं। इसके अलावा बच्चे अपनी सोसाइटियों और मोहल्लों में आयोजित होने वाले सफाई अभियानों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आजकल के बच्चे तकनीकी रूप से बहुत उन्नति कर रहे हैं। वे स्वच्छता के संदेश को फैलाने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी बेहतरीन उपयोग जानते हैं। बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से स्वच्छता पर छोटे वीडियो, एनिमेशन और पोस्टर बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा भी करते हैं। इसके अलावा कचरे से कंचन, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी बेकार पड़ी चीजों से सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला में बच्चे बहुत आगे हैं। वे पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से गमले, पेन स्टैंड और सजावट का सामान बनाकर रिसाइकलिंग के महत्व को साबित करते हैं। बच्चों की भागीदारी से होने वाले लाभ, स्वच्छता के प्रति जागरूकता के कारण बच्चों में डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी कम है। कम बीमारियां होती हैं क्योंकि बच्चे सफाई जानते हैं और सफाई दूसरों को करवाना भी जानते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। बचपन में सीखी गई आदतें जीवन भर साथ देती हैं। आज के ये जागरूक बच्चे जब बड़े होकर देश के नागरिक, नीति निर्माता बनेंगे तो वे पर्यावरण और स्वच्छता को हमेशा प्राथमिकता देंगे। सामुदायिक प्रेरणा, जब समाज के लोग छोटे छोटे बच्चों को हाथों में झाड़ू थामे या स्वच्छता के नारे लगाते हुए देखते हैं, तो बड़ों के भीतर भी सोई हुई नागरिक चेतना जाग उठती है। बच्चों

स्वच्छता अभियान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। इस अभियान में बच्चों की भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। बच्चों की मासूमियत, उनका उत्साह और उनकी जिद किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। यदि हम भारत को पूरी तरह से स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को लगातार प्रेरित करना होगा, उन्हें स्वच्छता के साधनों और सही शिक्षा से लैस करना होगा। जब देश का बच्चा स्वच्छता के प्रति सजग होगा, तभी हमारा भारत वैश्विक पटल पर एक आदर्श और स्वस्थ राष्ट्र के रूप में चमक सकेगा। तो प्यारे बच्चों, ये चर्चा हो गई आपसे स्वच्छता अभियान में बच्चों की भागीदारी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और गीत के बाद हम आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी चर्चा की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी चर्चा का विषय है पेड़ पौधों से दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण। बच्चों, पेड़ पौधों से दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। जैसे जैसे इंसान आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वे प्रकृति से भी दूर जा रहा है। कंक्रीट के जंगलों के बीच सांस लेती हमारी आधुनिक सभ्यता ये भूल जाती है कि उसका अस्तित्व इन्हीं हरे भरे पेड़ पौधों पर टिका है। पेड़ पौधों को सिर्फ एक संसाधन समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। वास्तव में बच्चों, ये हमारे सबसे सच्चे, निस्वार्थ और वफादार दोस्त होते हैं। कौन? पेड़ पौधे, जो हमसे बिना कुछ मांगे हमें क्या देते हैं? जीवन दान। एक आत्मिक रिश्ता, सच्ची दोस्ती वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के संकट के समय काम आए। पेड़ पौधे एक परिभाषा पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। एक पौधा जब छोटा होता है तब उसे हमारी देखभाल की जरूरत होती है। हम उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है वह एक सच्चे मित्र की तरह जीवन भर हमारा साथ देता है। पेड़ पौधे हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी और सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज देते हैं? ऑक्सीजन। बदले में वह हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय थोड़े से सम्मान और सुरक्षा के। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जब हम किसी बगीचे या जंगल में वक्त बिताते हैं ना, तो हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। पेड़ पौधों की हरियाली हमारे दिमाग को सुकून देती है। एक दोस्त की तरह वे हमारी उदासी को चुपचाप सोख लेते हैं और हमें ताजगी से भर देते हैं। पेड़ कभी यह नहीं देखता कि उसकी छाया में कौन बैठा है, अमीर है या गरीब, इंसान है या पशु, वह सबको समान रूप से अपनी छत्र छाया प्रदान करता। आज की सबसे बड़ी चुनौती हमारी पृथ्वी, बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम का चक्र बिगड़ चुका है और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा कम होती जा रही है। इस विनाश को रोकने का एकमात्र सबसे प्रभावी उपाय क्या है आप जानते हैं? पर्यावरण संरक्षण। और इसका सीधा रास्ता पेड़ पौधों से होकर गुजरता है। एक बड़ा पेड़ एक दिन में जितनी ऑक्सीजन दे सकता है, जिससे हम चार लोग आराम से सांस ले सकें। पेड़ पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ का वातावरण ठंडा और सुहावना रहता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। इसके अलावा पेड़ भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं और बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस पर अनगिनत पक्षी, कीड़े मकोड़े और गिलहरियां अपना घर बनाती हैं। पेड़ों को काटने का मतलब है लाखों बेजुबान जीवों के घरों को तबाह करना। दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है? घरेलू और सामाजिक स्तर पर। यदि हम सचमुच पेड़ पौधों को अपना दोस्त मानते हैं, तो हमें इस दोस्ती को निभाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। एक व्यक्ति एक पेड़ का संकल्प अपने जीवन के विशेष अवसरों, जैसे

0: जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी प्रियजन की याद में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। सिर्फ पौधा लगाना ही काफी नहीं है, बच्चों उसके बड़े होने तक एक बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी लें। यदि आपके पास जमीन की कमी है तो आप अपने घर की बालकनी या कमरों में छोटे छोटे पौधे जैसे मनी प्लांट है, एलोवेरा है, तुलसी, स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। ये घर के अंदर की हवा को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक माहौल बनाते हैं। अपने घर की छतों या आंगन में छोटी मोटी सब्जियां और औषधीय पौधे लगाएं। इससे आपको रासायनिक खाद से मुक्त शुद्ध भोजन मिलेगा और प्रकृति से जुड़ाव भी बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उपाय पेड़ लगाने के साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करने होंगे ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये न तो गलता है और न ही नष्ट होता है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक या इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए और कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना चाहिए। पानी की हर एक बूंद कीमती है। ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय, नहाते समय नल को खुला न छोड़ें। वर्षा के जल को संरक्षित करें। जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण जैसे पंखे, लाइट वगैरह को बंद कर दें। तो प्यारे बच्चों, ये चर्चा हो गई आपसे पेड़ पौधों से दोस्ती और पर्यावरण संरक्षण इस विषय पर। तो बच्चों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है अनंत का सूत्र। वार्ताकार हैं संतोष देवी।
1: अर्पित आज मुंह फुलाए बैठा था। दादी माँ ने जब उसे गुस्से में देखा तो उससे पूछा, क्या बात है अर्पित? इस पर अर्पित मुंह मोड़कर बैठ गया। तब दादी ने उससे दोबारा पूछा। इस पर अर्पित ने कहा, दादी आज घर पर बिना नमक का खाना बना है। आपको तो पता है ना, मुझे बिना नमक का खाना अच्छा नहीं लगता। तब दादी माँ ने कहा, बेटा आज तो अनंत चतुर्दशी है और आज नमक वाला खाना नहीं बनता। बस घर पर सब लोग यही कहे जा रहे हैं, आज अनंत चतुर्दशी है। अरे कोई यह भी तो बताओ कि यह अनंत चतुर्दशी है क्या? अर्पित नाराज होते हुए बोला। अब दादी माँ ने कहा, बेटा यह पुरानी कहानी है। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है जिसमें नमक के बिना बनाया हुआ सात्विक भोजन पाने का नियम है और आज भगवान विष्णु के वो अनंत सूत्र भी में भी बांधा जाता है। ओ दादी माँ, यह नई बात और ले आई आप, यह क्या चीज है? तब दादी माँ ने एक पीले रंग का धागा दिखाया जिसमें कुछ गांठें थी। उस धागे को देखकर अर्पित का मन कुछ जानने को इच्छुक हुआ। तब दादी माँ, यह धागा क्या है? पीले रंग का सुंदर सा धागा देखकर उसका मन हुआ, काश दादी माँ यह धागा मुझे भी दे दें। तब दादी माँ ने कहा, अर्पित यही तो अनंत सूत्र है, इसमें 14 गांठें होती हैं। यही अनंत सूत्र भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बांधा जाता है। दादी माँ यह धागा कब से बांधा जाता है? इस पर दादी माँ ने अर्पित को अपनी गोदी में ले लिया, उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इसकी कहानी बहुत पुरानी है। तब अर्पित बोला, तो दादी माँ वह कहानी मुझे सुनाओ ना। दादी माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है दादी माँ? तुम्हें बिना नमक का खाना खाना पड़ेगा। तब अर्पित ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं बिना नमक वाला खाना खा लूंगा, लेकिन आप मुझे कहानी सुनाओ ना। तब दादी माँ ने अर्पित को कहानी सुनाना शुरू किया। दादी माँ बोली, यह एक पौराणिक कथा है। पुराने समय में एक ऋषि थे, उनका नाम सुमंत था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सीला। सीला बहुत धार्मिक और बुद्धिमान थी। जब वह बड़ी हुई तो ऋषि ने उनकी शादी कौंडिल्य मुनि के साथ कर दी। कौंडिल्य मुनि बहुत विद्वान थे लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। तब अर्पित ने कहा, यह अहंकार क्यों करते थे? तब दादी माँ बोली, सुनो, पहले जब कौंडिल्य मुनि अपनी पत्नी सीला को विदा कर अपने आश्रम से लौटे तब सीला ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। सीला ने उन महिलाओं के पास जाकर पूछा तो उन महिलाओं ने बताया कि वह भगवान अनंत का व्रत पूजन कर रही है। तब सीला ने भी पूरी श्रद्धा से वहाँ पूजा की और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र अपने बाएं हाथ में बांध लिया। इस पर अर्पित ने पुनः उत्सुकता से पूछा, दादी माँ फिर क्या हुआ? तब दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, उस व्रत के प्रभाव से कौंडिल्य मुनि का आश्रम हरा भरा हो गया, वहाँ धन धान्य होने लगा, सुख समृद्धि छा गई और गाय बछड़ों से वह आश्रम परिपूर्ण हो गया। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा रहा। हाँ और फिर क्या हुआ दादी माँ? तब दादी माँ ने कहा, यह सब शीला के आने के बाद हुआ। तब एक दिन कौंडिल्य मुनि

की नजर शीला के हाथ पर पड़ी। शीला के हाथ में वह रेशमी धागा था। तब कौंडिल्य मुनि ने पूछा, शीला तुमने यह क्यों बांध रखा है? तब शीला ने कहा, यह भगवान अनंत का रक्षा सूत्र है, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह बात सुनकर मुनि का अभिमान और अधिक बढ़ गया। उन्होंने कहा, देखो शीला, इन धागों से कुछ नहीं होता, यह सब मेरी तपस्या का परिणाम है। तब शीला ने कहा, स्वामी, आपकी तपस्या के साथ साथ यह सब ईश्वर की कृपा है। इस धागे से मुझे आत्मबल मिलता है। इस बात पर कौंडिल्य मुनि नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में अनंत सूत्र को तोड़ दिया और उसे आग में फेंक दिया। यह सुनकर अर्पित बोला, दादी माँ, फिर तो भगवान अनंत नाराज हो गए होंगे। तब दादी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जब उस पवित्र सूत्र का अपमान हुआ तो भगवान विष्णु ने मुनि को सजा देने की सोची। उन्होंने चारों ओर अकाल कर दिया। देखते ही देखते मुनि के आश्रम में सभी वृक्ष सूखने लगे, गाय बीमार होने लगी, खेतों की फसल सूख गई, आश्रम में आग लग गई और इस प्रकार उस आश्रम का सारा धन नष्ट हो गया। इससे कौंडिल्य मुनि दाने दाने को तरस गए। एक दिन कौंडिल्य मुनि बहुत दुखी और बहुत भूखे थे। तब शीला से बोले, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है? शीला ने कौंडिल्य मुनि से कहा, तुमने वह अनंत सूत्र तोड़ा है और भगवान विष्णु का अपमान किया है। तब कौंडिल्य मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने शीला से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? तब शीला ने कहा, तुम्हें अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए। तब कौंडिल्य मुनि भगवान अनंत खोज में इधर उधर जंगल में भटकने लगे। उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में कौंडिल्य मुनि के पास आए और बोले, तुमने अनजाने में अनंत शक्ति का अपमान किया था। यदि तुम अपना वैभव वापस चाहते हो तो तुम्हें 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना होगा और बिना नमक का भोजन पाना होगा। तब कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला के साथ 14 वर्ष तक व्रत किया और अपना अहंकार त्याग कर उन्होंने पुनः वही धन धान्य प्राप्त किया। यही कारण है अनंत चतुर्दशी को भगवान अनंत की पूजा की जाती है। तब अर्पित ने कहा, यह तो बहुत अच्छी कहानी है दादी माँ, क्या कोई और भी कहानी है इसकी? तब दादी ने कहा, हाँ बेटा, एक कहानी और है। तब अर्पित बोला, वह कहानी भी मुझे सुनाओ ना दादी माँ। तब दादी माँ ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, एक कहानी हमारे पुराणों में भी है। वह कौन सी कहानी है दादी माँ? बेटा, यह कहानी भी ऐसी है, इसमें भी हम पांडवों का अभिमान चूर चूर हुआ था। यह क्या कहानी है? अर्पित ने पूछा। तब दादी माँ ने कहा, सुनो अर्पित, एक बार दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर और पांडवों से उनका सारा राजपाट छीनने के लिए उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का बहुत आनंद आता था। उन्हें लगता था मैं द्यूत क्रीड़ा में जीत जाऊंगा, लेकिन शकुनी बहुत चालाक था। उसने अपनी चालाकी और बेईमानी से पांडवों का सारा राजपाट धन दौलत छीन लिया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। इस प्रकार पांडव जंगल में चले गए। वह जंगल में बहुत दुखी रहने लगे। तब एक दिन भगवान कृष्ण उनसे मिलने गए। इस पर अर्पित ने कहा, अरे वाह, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, हमने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्या हमारे इन दुखों का कोई अंत है या कोई ऐसा उपाय है जिसमें हम अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, सभी दुखों को दूर करने का एक अचूक उपाय अनंत चतुर्दशी को भगवान अनंत की पूजा करना है। इससे सभी संकटों का नाश होता है। तब युधिष्ठिर ने अनंत का स्मरण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप युधिष्ठिर को दिखाया और कहा, तुम 14 वर्षों तक इसी व्रत का पालन करो तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रकार पांडवों ने 14 वर्षों तक अनंत का पूजन किया और उन्हें भी महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अरे वाह दादी माँ, यह तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन इसमें यह 14 गांठों का क्या महत्व है? तब दादी माँ ने कहा, 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र का अर्थ है 7 विकारों का त्याग और 7 गुणों को ग्रहण करना। अर्पित बोला, अरे दादी माँ, ये 7 विकार कौन कौन से हैं? तब दादी ने कहा, अर्पित सुनो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुर्व्यवहार और कुविचार, इनका हमें त्याग करना चाहिए। और 7 गुण जिसमें दया, परोपकार, ज्ञान, खुलापन, संचित धन, आत्मविश्वास और मेहनत, इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यह 14 गांठें हमें प्रतिज्ञा लेकर करनी चाहिए। अरे वाह, इस प्रकार तो हम अनंत सूत्र से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अर्पित चहक कर बोला। तब दादी माँ ने कहा,
हाँ अर्पित, हम सतमार्ग

पर चलेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तब अर्पित ने कहा, दादी माँ, क्या यह अपने ही धर्म में मनाया जाता है? इस पर दादी माँ ने कहा, बेटा, यह दिवस अति विशेष है, यह बहुत शुभ माना जाता है। जैन धर्म में इस दिन पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है और जैन धर्म के अनुयायी इस पर्व को आत्मशुद्धि पर्व के रूप में मनाते हैं और दक्षिण में आज ही के दिन गणेश विसर्जन होता है। अनेक स्थानों पर दान पुण्य की महिमा भी है। तब अर्पित बोला, दादी माँ, आज आपने मुझे अनंत सूत्र के विषय में बताया है, सच इसके द्वारा हम सही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तब दादी माँ ने कहा, अर्पित, हमारे त्योहार हमें मनोरंजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु हमारे जीवन में सन्मार्ग व सद्गुण भी प्रदान करते हैं। इन त्योहारों का धार्मिक महत्व ही नहीं है, अपितु इनका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जिससे हमारे अंदर भाई

0: सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जिससे हमारे अंदर भाईचारा, प्रेम और एकता का भाव पैदा होता है।
1: जो अभी आपने संतोष देवी द्वारा सुनी ये वार्ता, वार्ता थी अनंत का सूत्र। प्यारे बच्चों, इसी वार्ता के साथ हम अपने कार्यक्रम को देते हैं विराम। लेकिन बच्चों, जाने से पहले आपको लिखना है हमारा पता, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और लिखो हमारा पता। बच्चों, हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा। बच्चों।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया पूनम यादव ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का है। संयोजन और प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की। आइए सुने विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
1: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूँ चंद्रिका कुमार। श्रोताओ, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों का नाम नहीं, बल्कि मनुष्य की उस जिज्ञासा का परिणाम है जिसने उसे प्रकृति के रहस्यों को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रेरित किया है। आज हम विज्ञान के ऐसे दौर में हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता को नई दिशा दे रही है। प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का विस्तार बनेगी या आने वाले समय की कोई नई चुनौती। इस अंक में हमारी विशेष विज्ञान चर्चा इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के विभिन्न पहलुओं को सामने रखेगी। तकनीक ने जहां जीवन को सरल बनाया है, वहीं उसके दुरुपयोग ने नई चुनौतियां भी पैदा की हैं। साइबर अपराध आज किसी एक व्यक्ति, संस्था या देश तक सीमित नहीं है। एक छोटी सी असावधानी हमारी निजी जानकारी और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हमारी विशेष रिपोर्ट में आईटी विशेषज्ञ नवीन वार्ष्णे से जानेंगे कि साइबर अपराधों से कैसे सतर्क और सुरक्षित रहा जा सकता है। दूसरी ओर, तकनीकी विकास के साथ बढ़ता ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता बनता जा रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का बढ़ता उपयोग सुविधाएं तो बढ़ा रहा है, लेकिन इनके जिम्मेदार निस्तारण की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ रही है। इस विषय पर हमारी विशेष रिपोर्ट आपको ई वेस्ट प्रदूषण के कारणों और समाधान से परिचित कराएगी। और विज्ञान के इतिहास की यात्रा में हम याद करेंगे उन महान वैज्ञानिकों को जिनके योगदान ने मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया। श्रृंखला विज्ञान जिनका ऋणी है में जानेंगे परमाणु युग के महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी और ब्रह्मांड को नई दृष्टि देने वाले वैज्ञानिक एडविन हबल के बारे में। इसी क्रम में विज्ञान गल्प चांद पर बसा पहला शहर हमें भविष्य की उस दुनिया की कल्पना कराएगा जहां मनुष्य पृथ्वी से आगे निकलकर चंद्रमा पर अपना नया संसार बसाने का प्रयास कर रहा होगा। तो आइए जिज्ञासा को जीवित रखें, प्रश्न पूछें और विज्ञान को केवल जाने नहीं समझें, परखें और अपने जीवन से जोड़ें। इसी वैज्ञानिक चेतना और जिज्ञासा के साथ प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। श्रोताओं, तकनीक ने मानव जीवन को निरंतर नई ऊंचाइयां दी हैं और आज इसी तकनीकी यात्रा का सबसे चर्चित पड़ाव है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, संचार और शोध से लेकर रोजमर्रा के कार्यों तक एआई हमारी कार्यक्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का विस्तार है या भविष्य की कोई नई चुनौती? विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में आज की विज्ञान चर्चा इसी महत्वपूर्ण विषय पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव बुद्धि का विस्तार या नई चुनौती। आइए समझते हैं कि एआई हमारे लिए अवसरों के कितने नए द्वार खोल रहा है और इसके

0: जिम्मेदार एवं सुरक्षित उपयोग के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओ, डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में बढ़ते साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती भी बन रहे हैं। फर्जी कॉल, लिंक और संदेशों के माध्यम से होने वाली ठगी से लेकर बैंकिंग फ्रॉड और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी तक साइबर अपराध के तरीके लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि हम डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करते समय सतर्क और जागरूक रहें। साइबर अपराध से बचाव और उपायों को जानने के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत है। इस रिपोर्ट में आईटी एक्सपर्ट नवीन वार्षणे से बातचीत की है। आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका नवीन वार्षणे जी। आप मथुरा के प्रसिद्ध आईटी विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे साइबर अपराध से बचाव, मोबाइल और यूपीआई का सुरक्षित उपयोग विषय के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज कल के जो डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, इस युग में साइबर अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं और आम लोग किस प्रकार इसकी शिकार से बच सकते हैं?
2: साइबर अपराध मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले अपराध इस श्रेणी में आते हैं
1: जी।
2: और जिस तरह से आजकल डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इस तरह के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इन अपराधों को करने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो फर्जी फेक कॉल्स का यूज कर सकते हैं या आपके मोबाइल SMS, ईमेल या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आपको इसका शिकार बना सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है आजकल, कई बार हमारे पास कुछ फर्जी कॉल्स आते हैं, वो बैंक के अधिकारी बनके हमसे बात कर सकते हैं और हमसे हमारी जो गोपनीय जानकारियां होती हैं, बैंक डिटेल्स, वो मांग सकते हैं
1: जी। जैसे कि हम आज के तकनीकी युग में जी रहे हैं, तो इस दौर में मोबाइल के उपयोग से हम नहीं बच सकते, तो वहीं मोबाइल फोन के माध्यम से जो होने वाले साइबर अपराध हैं, उन अपराधों से बचने के लिए किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं?
2: जिस प्रकार आपने कहा कि मोबाइल के यूज से तो आजकल नहीं बचा जा सकता, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हम सेफ रहें ऐसे साइबर क्रिमिनल से, तो सबसे पहले तो मोबाइल्स जो हमारे होते हैं उन मोबाइल्स को आप लॉक करके रखें। लॉक इन द सेंस कि उनमें इस तरह के पासवर्ड डालें या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डालें जो और कोई ब्रेक ना कर सके इजीली। पासवर्ड भी ऐसे डालें जो इजीली कोई भी गैस ना कर सके। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं जैसे 0000 या 123, बहुत कॉमन पासवर्ड
1: जाते हैं।
2: ऐसे पासवर्ड लगाने से हमें बचना चाहिए। दूसरा कि कोई भी अगर हमारे पास अननोन लिंक आता है जिस पर क्लिक करके बोला जाता है हमें, तो ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ये लिंक एक इस तरह का हो सकता है जो आपके मोबाइल से पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी हमारे क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रांसफर कर दे। दूसरा, ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कुछ लिंक हो सकते हैं जिनके थ्रू हमसे कुछ ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। ये ऐप डाउनलोड होने के बाद हमारे सिस्टम की या हमारे मोबाइल की जानकारियों को क्रिमिनल तक साझा कर देते हैं। तो ऐसे किसी भी पर्सनल जानकारी को मोबाइल के किसी के साथ में साझा ना करें जिससे कि हमारे किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान की संभावना हो सकती है
1: जी। ये तो बताया आपने कि हम मोबाइल के माध्यम से जो ऐप हैं या जो भी लिंक है उनको हम डाउनलोड ना करें, उनको हम अनावश्यक लिंक या जो भी अननोन पर्सन हमें भेजते हैं लिंक उस पर टच ना करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए भी हम एक यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उस यूपीआई के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा होने वाली धोखाधड़ी क्या होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है?
2: सवाल है क्योंकि आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन में भारत सबसे नंबर वन है और ज्यादातर लोग आजकल यूपीआई ऐप का यूज करते हैं मनी ट्रांजेक्शन के लिए। इवन हमने देखा है कि छोटे छोटे दुकानदार वाले ठेले वाले यूपीआई ऐप का यूज करते हैं। तो इसमें मुख्यतः दो तरह के केसेस होते हैं जिनसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक, कोई भी हमारे पास पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है, कलेक्ट रिक्वेस्ट, उस कलेक्ट रिक्वेस्ट को ध्यान से देखें कि जो हमें पैसे डिमांड करने के लिए रिक्वेस्ट आई है वो ठीक है या नहीं। और एक बात हमें जानकारी रखनी चाहिए कि कभी भी हमें पैसा ट्रांसफर जब करना होता है तभी यूपीआई पिन की आवश्यकता।

0: होती है, कोई भी
1: जी
0: हमसे कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है तो वहाँ यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें
1: जी
0: भेजना होता है पैसा तभी हम यूपीआई पिन का यूज करते हैं। साथ में आजकल क्यूआर कोड के थ्रू भी स्कैम होने की संभव है, जिसमें कि हम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं डिजिटली। तो हमारे पास बहुत बार कई बार ऐसे क्यूआर कोड आ सकते हैं जिनको स्कैन करने पर जो मनी है वो किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, ना कि
1: जी
0: उसमें हम डालना चाहते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतने अच्छे विचार साझा किए साइबर अपराध से किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और पूरी सतर्कता के साथ अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत हद तक साइबर अपराध के घेरे में नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
2: श्रोताओं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन उपकरणों के अनुपयोगी होने के बाद उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट आज पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ई वेस्ट का सही निस्तारण न होने पर इसमें मौजूद हानिकारक पदार्थ मिट्टी, जल और वायु को प्रभावित कर सकते हैं। आखिर ई वेस्ट को किस तरह नियंत्रित और सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाए, इसी विषय पर हमारी विशेष रिपोर्ट में विशेषज्ञ तरुणा जोगेश से आइए सुनते हैं ई वेस्ट पॉल्यूशन पर जागरूकता परक रिपोर्ट।
3: ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। हम सब मोबाइल, लैपटॉप, हेडफोन्स, चार्जर्स हर साल ही बदलते रहते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ये सोचते होंगे कि आगे चलकर इन खराब या पुराने उपकरणों का आखिर होगा क्या। भारत में हर साल लाखों टन ई वेस्ट निकलता है, और अगर इसे सही तरीके से नष्ट ना किया जाए तो इसमें मौजूद जहरीले रसायन हमारी मिट्टी, पानी और हवा तीनों को ही जहरीला बना देते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान होता है भविष्य को, यानी कि आने वाली पीढ़ी को। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान हमारे हाथ में ही है। अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेकार ना फेंक कर अधिकृत ई वेस्ट सेंटर पर दे दें, या पुराने फोन को घर में जमा करने के बजाय रिसाइकल करवा दें, या फिर संभव हो तो मरम्मत करके उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। सरकार भी ई वेस्ट के संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब हम युवा जागरूक होकर इसमें हिस्सा लेंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर एक वादा करते हैं कि अपने शहर, अपने देश और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, विज्ञान की यात्रा जिज्ञासा से शुरू होती है और खोज पर जाकर भी समाप्त नहीं होती, लेकिन प्रत्येक खोज अपने साथ कई नए प्रश्न लेकर आती है। मानव ने जब प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास किया तो कभी उसने परमाणु के भीतर झांका और कभी तारों से आगे फैले अनंत ब्रह्मांड को जानने की कोशिश की। विज्ञान के इसी अनवरत अभियान में कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिनकी प्रतिभा और अनुसंधान ने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हमारी श्रृंखला विज्ञान जिनका ऋणी है में आज हम स्मरण कर रहे हैं दो ऐसे महान वैज्ञानिकों को जिन्होंने एक ओर पदार्थ की सूक्ष्म दुनिया के रहस्यों को खोला और दूसरी ओर ब्रह्मांड की विराटता को समझने की नई दृष्टि दी। ये वैज्ञानिक हैं एनरिको फर्मी और एडविन हबल। श्रोताओं, सबसे पहले बात उस वैज्ञानिक की जिसे आधुनिक परमाणु भौतिकी और परमाणु युग के प्रमुख निर्माताओं में गिना जाता है, एनरिको फर्मी। 29 सितंबर 1901 को इटली के रोम में जन्मे एनरिको फर्मी बचपन से ही गणित और भौतिकी के प्रति असाधारण प्रतिभा रखते थे। आगे चलकर उन्होंने परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में ऐसे महत्वपूर्ण प्रयोग और अनुसंधान किए जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। फर्मी ने न्यूट्रॉन और परमाणु नाभिक के व्यवहार पर महत्वपूर्ण कार्य किया तथा धीमे न्यूट्रॉनों की सहायता से होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। उनके उपयोग के लिए उन्हें वर्ष 1938 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फर्मी की वैज्ञानिक यात्रा का सबसे ऐतिहासिक अध्याय आया 2 दिसंबर 1942 को, जब शिकागो विश्वविद्यालय में उनके नेतृत्व में शिकागो पाई वन में

दुनिया की पहली नियंत्रित और आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया सफलतापूर्वक संचालित की गई। ये उपलब्धि परमाणु ऊर्जा के युग की शुरुआत का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। परमाणु ऊर्जा ने आगे चलकर ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनेक नए रास्ते खोले। हालांकि इसी शक्ति ने परमाणु हथियारों के रूप में मानवता के सामने गंभीर नैतिक प्रश्न भी खड़े किए। इसलिए फर्मी की विरासत हमें विज्ञान की शक्ति के साथ साथ उसके विवेकपूर्ण और मानवीय उपयोग का संदेश भी देती है। श्रोताओ, एनरिको फर्मी ने हमें परमाणु के भीतर छिपी ऊर्जा और उसके रहस्यों को समझने की दिशा दिखाई। लेकिन मानव की जिज्ञासा केवल सूक्ष्म जगत तक सीमित नहीं रही। अगला प्रश्न इससे कहीं बड़ा था। जिस आकाश को हम देखते हैं, क्या वे वास्तव में उतना ही सीमित है जितना हमें दिखाई देता है? क्या हमारी आकाश गंगा ही पूरा ब्रह्मांड है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने वाले वैज्ञानिक थे एडविन हबल। श्रोताओ, एडविन पावेल हबल का जन्म 20 नवंबर 1879 को अमेरिका के मिसौरी राज्य में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने कानून का अध्ययन किया, लेकिन उनका आकर्षण अंततः खगोल विज्ञान की ओर हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों के बीच ये बहस थी कि आकाश में दिखाई देने वाली कुछ धुंधली वस्तुएं हमारी अपनी आकाश गंगा का हिस्सा है या स्वयं अलग अलग विशाल आकाश गंगाएं। हबल ने शक्तिशाली दूरबीनों से किए गए अपने अवलोकनों और तारों के अध्ययन के आधार पर इस समझ को मजबूत किया कि हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड की अकेली आकाशगंगा नहीं है। हमारी आकाशगंगा के बाहर भी असंख्य आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हबल की खोजों ने ब्रह्मांड के आकार और संरचना के संबंध में मानव की सोच को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उनके अवलोकनों से ये महत्वपूर्ण प्रमाण सामने आया कि दूरस्थ आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और सामान्यतः अधिक दूर स्थित आकाश गंगाएं अधिक तेजी से दूर जाती दिखाई देती हैं। इस संबंध को आगे चलकर हबल के नियम के रूप में जाना गया। इससे ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को मजबूती मिली और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को नई दिशा प्राप्त हुई। एडविन हबल का निधन 28 सितंबर 1953 को हुआ। उनकी जयंती 20 नवंबर को और पुण्यतिथि 28 सितंबर को हमें इस महान वैज्ञानिक की याद दिलाती है। उनके सम्मान में अंतरिक्ष में स्थापित प्रसिद्ध हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया, जिसने ब्रह्मांड की ऐसी अद्भुत तस्वीरें हमारे सामने रखी जिन्होंने करोड़ों लोगों की कल्पना को अंतरिक्ष की विराटता से जोड़ दिया। श्रोताओ, दिलचस्प बात ये है कि एनरिको फर्मी और एडविन हबल की वैज्ञानिक यात्राएं अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ी, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी, प्रकृति के रहस्यों को समझना। फर्मी ने परमाणु की सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश किया और हबल ने आकाश गंगाओं की विराट दुनिया के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। एक ने पदार्थ की गहराइयों में छिपी ऊर्जा को समझने की राह दिखाई तो दूसरे ने मानव की दृष्टि को हमारी पृथ्वी और हमारी आकाश गंगा से कहीं आगे तक पहुंचा दिया। एनरिको फर्मी की जयंती 29 सितंबर को और उनकी पुण्यतिथि 28 नवंबर 1954 को हुई। हर वर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि हमें ये स्मरण कराती है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां केवल प्रयोगशालाओं में दर्ज परिणाम नहीं होती, बल्कि वह मानव सभ्यता के भविष्य को प्रभावित करने वाली विरासत बन जाती है। इसी तरह एडविन हबल की जयंती 20 नवंबर और पुण्यतिथि 28 सितंबर हमें याद दिलाती है कि हमारी आंखों से दिखाई देने वाला आकाश ब्रह्मांड की विशालता का केवल एक छोटा सा अंश है। विज्ञान ने हमारी दृष्टि को जितना विस्तार किया है उतना ही हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाया है। फर्मी ने परमाणु से पूछा, उसके भीतर क्या छिपा है? हबल ने आकाश की ओर देखा और पूछा, इस विराट ब्रह्मांड की सीमा कहाँ है? दोनों ने अपने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजे और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया। यही विज्ञान की सुंदरता है। सूक्ष्म से विराट तक, परमाणु से आकाश गंगा तक और जिज्ञासा से ज्ञान तक की निरंतर यात्रा। एनरिको फर्मी और एडविन हबल जैसे वैज्ञानिक हमें संदेश देते हैं कि प्रश्न पूछने की क्षमता ही प्रगति का पहला कदम है। उनकी अनुसंधान और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी।
श्रोताओं, मनुष्य ने सदियों से चांद को निहारते हुए उसके बारे में कल्पनाएं की हैं।

कभी उसे देवताओं का लोक माना गया तो कभी कवियों ने उसे प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनाया। लेकिन विज्ञान ने चांद को कल्पना के आकाश से निकालकर वास्तविक अनुसंधान का विषय बना दिया है। जरा कल्पना कीजिए, वो समय आ गया है जब चांद केवल आकाश में दिखाई देने वाला पिंड नहीं बल्कि मनुष्यों का नया ठिकाना बन चुका है। चांद की सतह पर चमकती इमारतें हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं और धरती से लाखों किलोमीटर दूर मानव जीवन की एक नई बस्ती आकार ले रही है। कैसा होगा चांद पर बसा पहला शहर? वहाँ लोग कैसे रहेंगे? हवा, पानी और भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? क्या वहाँ बच्चे स्कूल जाएंगे? और क्या कभी कोई इंसान चांद की धरती पर खड़े होकर धरती को देखकर कहेगा, वो रहा हमारा पुराना घर? इन्हीं रोमांचक सवालों और वैज्ञानिक कल्पनाओं को लेकर प्रस्तुत है आज का विज्ञान गल्प, चांद पर बसा पहला शहर। गल्पकार हैं अरविंद कुमार।

श्रोताओं, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 50 वर्ष पहले मनुष्य ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था। 20 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला मानव कदम रखा। उसके बाद अपोलो अभियानों के माध्यम से कुल 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर चले। उन्होंने वहां की मिट्टी, चट्टानों, सूर्य पवन और चंद्र पर्यावरण का अध्ययन किया। लेकिन तब किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन चंद्रमा पर केवल अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक और सामान्य नागरिक भी रहेंगे और वहां एक शहर बसेगा। आइए आज की विज्ञान गल्प में हम आपको ले चलते हैं चांद पर बसे पहले शहर की ओर। पृथ्वी से लगभग 384,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट एक नया मानव आवास स्थापित हो चुका है। उसका नाम है चंद्रप्रभा। श्रोताओं, ये कोई काल्पनिक चमकता हुआ महानगर नहीं है बल्कि चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में मनुष्य की बुद्धि, तकनीकी और धैर्य से निर्मित एक वैज्ञानिक नगर है। चंद्रप्रभा में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति को विशेष अंतरिक्ष पोशाक पहननी पड़ती है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, मौसम नहीं है, बादल नहीं है और हवा भी नहीं। सतह पर तापमान में अत्यंत तीव्र परिवर्तन होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग छठा हिस्सा है, इसलिए वहां चलना कुछ कुछ उछलते हुए आगे बढ़ना जैसा अनुभव देता है। शहर के मुख्य द्वार पर लिखा है, पृथ्वी से बाहर मानव सभ्यता का पहला स्थायी पड़ाव। चंद्रप्रभा का अधिकांश भाग चंद्र सतह के ऊपर बने मजबूत दबाव युक्त मॉड्यूलों और कुछ हिस्सों में चंद्र मिट्टी से ढकी संरचनाओं के भीतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होने से अंतरिक्षीय विकिरण और सूक्ष्म उल्का पिंडों का खतरा बना रहता है। भविष्य के आवासों की योजना में विकिरण से सुरक्षा, तापमान नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणालियां सबसे महत्वपूर्ण होंगी। शहर में प्रवेश करते ही सामने दिखाई देता है प्राण केंद्र। यहीं ऑक्सीजन, पानी, तापमान और वायु दाब की निगरानी होती है। पृथ्वी से पानी ले जाना अत्यंत महंगा और कठिन है, इसलिए वैज्ञानिक चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद जल बर्फ के संभावित भंडारों का अध्ययन कर रहे हैं। विशेष रूप से स्थायी छाया वाले गड्ढों में जल बर्फ मिलने की संभावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्रप्रभा के वैज्ञानिक रोबोटिक उपकरणों की सहायता से चंद्र मिट्टी के नमूने एकत्र करते हैं। वे ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बर्फ कहाँ है, कितनी मात्रा में है और क्या भविष्य में उसे पानी, ऑक्सीजन या रॉकेट ईंधन के घटकों में बदला जा सकता है। इस शहर का सबसे व्यस्त स्थान है अन्वेषण चौक। यहां से स्वचालित रोवर चंद्रमा की सतह पर निकलते हैं। कुछ रोवर चट्टानों का विश्लेषण करते हैं, कुछ तापमान मापते हैं और कुछ उन स्थानों की खोज करते हैं जहां भविष्य में

वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकें। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहां सूर्य क्षितिज के बहुत नीचे दिखाई दे सकता है और कई स्थानों पर लंबे समय तक छाया बनी रहती है। कुछ ऊंचे स्थानों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश उपलब्ध हो सकता है, जबकि गहरे क्रेटरों में लगभग स्थायी अंधकार रहता है। यही प्रकाश और छाया का विरोधाभास चंद्र अन्वेषण को कठिन भी बनाता है और उपयोगी भी। चंद्र प्रभा में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर पैनल है, लेकिन चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश की स्थिति पृथ्वी जैसे नियमित नहीं होती, इसलिए ऊर्जा भंडारण, बैटरियां और भविष्य में अन्य विश्वसनीय ऊर्जा प्रणालियां आवश्यक हैं। अब आइए शहर की प्रयोगशाला में चलते हैं। यहां वैज्ञानिक चंद्रमा की चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह अरबों वर्षों से अंतरिक्षीय घटनाओं के निशान संजोए हुए है। वहां की मिट्टी हमें पृथ्वी, सूर्य और सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास को समझने में सहायता कर सकती है। चंद्रमा वास्तव में एक प्रकार का प्राकृतिक वैज्ञानिक अभिलेखागार है, जहां समय के निशान अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। प्रयोगशाला की एक दीवार पर पृथ्वी की तस्वीर लगी है। एक युवा वैज्ञानिक अपने साथी से कहता है, हम यहाँ चंद्रमा को समझने आए थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि चंद्रमा के माध्यम से हम पृथ्वी को भी बेहतर समझ रहे हैं। चंद्र प्रभा में रहने वाले लोगों का जीवन पृथ्वी से बहुत अलग है। यहाँ बाहर निकलना केवल काम नहीं, एक वैज्ञानिक अभियान होता है। हर गतिविधि समयबद्ध होती है। अंतरिक्ष पोशाक की जांच, ऑक्सीजन की मात्रा, संचार प्रणाली, मार्ग निर्धारण और वापसी की योजना, सब कुछ पहले से तय किया जाता है। चंद्रमा की महीन धूल, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, भी बड़ी चुनौती है। ये धूल अंतरिक्ष पोशाक, उपकरणों और मशीनों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे आवास और उपकरण विकसित कर रहे हैं जो चंद्र धूल से बेहतर सुरक्षा दे सके। चंद्र प्रभा में एक छोटा सा हरित गृह भी है। यहाँ पौधों को मिट्टी के बजाय नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। अभी ये प्रयोगशाला व्यवस्था है। इसका उद्देश्य भोजन उत्पादन की संभावनाओं को समझना, ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन करना और लंबे समय तक अंतरिक्ष में मनुष्य के रहने की क्षमता बढ़ाना है। हालांकि चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा प्राकृतिक जीवन चक्र नहीं है, इसलिए हर बूंद पानी, हर ग्राम भोजन और हर लीटर ऑक्सीजन का हिसाब रखना पड़ता है। चंद्र प्रभा पर सबसे ऊंचा भाग है दूरदृष्टि वेधशाला। यहां से वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण कुछ प्रकार के खगोलीय अवलोकनों के लिए वहां का वातावरण पृथ्वी की तुलना में उपयोगी हो सकता है। दूरबीने पृथ्वी के वायुमंडलीय व्यवधान से मुक्त होकर अंतरिक्ष का अध्ययन कर सकती हैं। एक वैज्ञानिक पृथ्वी की ओर देखते हुए कहता है, कभी मनुष्य चंद्रमा को केवल आकाश में देखता था, अब हम चंद्रमा से पृथ्वी को देख रहे हैं। यही मानव यात्रा का अद्भुत परिवर्तन है। पहले चंद्रमा तक पहुंचना लक्ष्य था, अब चंद्रमा से आगे मंगल तक जाने की तैयारी का प्रश्न सामने है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर मानव और रोबोटिक अन्वेषण को आगे बढ़ाने, संसाधनों का अध्ययन करने और भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए तकनीक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन चांद पर शहर बसाना केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। चंद्रमा किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। वहां की खोज, संसाधनों का उपयोग और वैज्ञानिक गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। भविष्य का चंद्र शहर तभी मानवता की उपलब्धि कहलाएगा जब वो प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग का प्रतीक

0: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा। आलेख स्वर और प्रस्तुति सहयोग चंद्रिका कुमार का था। संयोजन और प्रस्तुति ओम प्रकाश सिंह की।
3: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

बोल राधा बोल, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मोहब्बत से।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में मोहब्बत फिल्म का ये गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सांवरिया से।

शान और साथियों की आवाज़ में आपने सुना सांवरिया फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की थी, संगीत मोंटी का था। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लीजिए सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत राहत फतेह अली खां, आशीष कौर और तनिष्क बागची की आवाजों में। गीत को लिखा है रश्मि विराग ने, संगीत तनिष्क बागची का है।

पेश है फिल्म शंघाई का ये गीत नंदिनी शिखर और अरिजीत सिंह के स्वरों में। गीत को लिखा है अन्विता दत्ता ने, संगीत विशाल और शेखर का।

शंघाई फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम पेश कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित। आइए सुने कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाश वाणी हेलो आकाश वाणी हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: और क्या हो रहा है आपके घर में?
1: बस आप लोगों की सेवा हो रही है।
2: अच्छा जी, और सब परिवार में सही है?
1: सब बढ़िया है। आप बताएं, आप कौन साहब बोल रहे हैं?
2: गीता देवी बोल रहे हैं आगरा से।
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: अच्छा जी,
1: क्या करती हैं आप?
2: हम घुंघरू बनाते हैं।
1: अच्छा अच्छा, अपना स्वयं का काम है?
2: नहीं, आपका काम है
1: जी।
2: किलो के हिसाब से बनाते हैं।
1: अच्छा, तो हमारा कार्यक्रम कब से सुन रही हैं आप?
2: हम आपका कार्यक्रम कम से कम 20 साल हो गए हमें सुनते सुनते।
1: अरे वाह, फोन पहली बार लगा है?
2: नहीं, दूसरी बार लगा है।
1: अच्छा, बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
2: गाना है आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्यानी सब में अकेले हैं। माँ
1: फिल्म से सुनवाते हैं आपको ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
1: ग्राम नंगला काचान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथ के।
0: रूप सिंह जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं?
1: बढ़िया हैं, आप सुनाइए आकाशवाणी में।
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं सर। और परिवार में कैसे हैं आपके?
1: सभी बढ़िया हैं, एकदम खुश हैं, मस्त हैं।
0: जी जी, बताइए आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी रूप सिंह जी?
1: जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद, और फिल्म का नाम आन मिलो सजना।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार देवराज जी, क्या हाल चाल?
0: एकदम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं
1: मैं आनंद में हूँ, सब
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: आनंद में है। आपकी भी कुशलता की कामना करते हैं। मैं एस के चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, अयोध्या कॉलोनी मथुरा से। धन्यवाद
0: स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका।
1: देवराज जी।
0: जी, बहुत दिनों के बाद आपका कॉल मिला है।
1: हाँ, लगता ही नहीं है कॉल,
0: जी, इस समय ये व्यस्त रहता है लाइन।
1: बहुत व्यस्त रहती है।
0: जी, और बताइए क्या कहना चाहेंगे।
1: अब यही कहना चाहेंगे कि ये नंबर बहुत बिजी रहता है, तो उसका टाइम थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए।
0: चलिए प्रयास करते हैं। बताइए आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी।
1: आज मेरी फरमाइश है, पुरानी फिल्म है मेहरबान,
0: जी
1: उसका एक गाना है, एक राजा की सुन लो कहानी।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
1: धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार,
1: क्या हाल है? सर
0: बहुत अच्छे हैं हम तो, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है। सर
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर नरेंद्र कुमार इगलास जिला अलीगढ़।
0: नरेंद्र जी,
1: राधाअष्टमी की सर शुभकामनाएं आपको। सर
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
1: सर सबसे बड़ा काम है कठिन कार्य आपके यहाँ कॉल करना।
0: बिल्कुल, लेकिन जो लगातार प्रयास करते रहते हैं वो सफल होते हैं।
1: जी सर। सर एक जोकर फिल्म का गाना सुनना था।
0: मेरा नाम जोकर, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं?
1: कोई सा भी सुनवा दो जोकर फिल्म का।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। निश्चित जी, कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं अशोक जी, आप बताइए कैसे हैं।
1: मैं भी ठीक हूँ, बात हो रही है आपसे और अच्छे हो गए। सर कैसा मौसम है?
0: उमस भरा मौसम है सर।
1: इधर भी धूप है सर। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: यहाँ तो घर घर में विराजे हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: वैसा उन्हीं के जयकारा भक्ति भाव से पूरा वातावरण है।
0: बिल्कुल, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: इलाका मूवी का
0: जी
1: देवा देवा गली गली में चारों तेरा शोर।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों कहते हैं ना, कुछ बातें शब्दों में नहीं एहसासों में कही जाती हैं, और कुछ एहसास गीतों के सुरों में आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए कुछ बातें शब्दों में और कुछ बातें संगीत के माध्यम से करते हैं, और सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल, विशाल डडलानी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म दोस्ताना से। गीत रचना अन्विता दत्त की, संगीत विशाल शेखर का था।

दोस्तों, कभी कोई गीत हमें बीते हुए कल की याद दिलाता है, कभी किसी अपने की मुस्कान याद दिलाता है, तो कभी कोई धुन बिना कुछ कहे ही दिल को छू जाती है और कुछ बात कह जाती है।

जी हाँ दोस्तों, रिश्ते जिंदगी की वो खूबसूरत धुन है जिन्हें सुनने के लिए कान नहीं दिल चाहिए। कभी इसमें हंसी की मिठास होती है, कभी रूठने मनाने का सिलसिला, और कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेने का एहसास। इन्हीं में से एक रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ही अनमोल होता है, और वो होता है दोस्ती का रिश्ता, यानी कुछ अनकहे एहसास। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जहाँ हर बात कहनी नहीं पड़ती। कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है समझने के लिए, कभी सामने वाले की नज़र से ही आप महसूस कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। दोस्त वो होता है जिसके साथ हम अपनी खुशियाँ खुलकर बांटते हैं, अपनी परेशानियाँ बेझिझक कहते हैं, और अपनी छोटी छोटी बातों पर भी अपना दिल खोलकर हंसते हैं।

यह होती है कि वहाँ रिश्ते निभाने के लिए कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। एक दोस्त वो होता है जिसके सामने हम जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। कभी कभी दोस्त से बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। उसकी आवाज़ में छुपी उदासी को सुन लेना और उसकी खामोशी को समझ लेना ही दोस्ती है।

कुछ दोस्त ज़िंदगी के सफ़र में बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी दूर नहीं होती। सालों बाद जब भी हम उनसे बात करते हैं या मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कल ही मिले थे और कल की सारी ही बातों को आज इस पल में जी लेते हैं।

शंकर महादेवन की आवाज़ में आपने सुना ये गीत फिल्म दिल चाहता है से। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत शंकर एहसान लोय का था।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे दोस्ती एक अनकही रिश्ते के बारे में। समय के साथ जिंदगी बदलती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय शायद जिंदगी का सबसे बेफिक्र समय होता है। कभी छोटी सी बात पर घंटों हंसना, कभी बिना किसी बात के या बिना किसी वजह के घूमने निकल जाना, और कभी मुश्किल वक्त में बिना बुलाए ही साथ खड़े हो जाना, यही तो है दोस्ती की खूबसूरत बातें। समय के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाना, लेकिन जब समय मिले एक छोटे से फोन कॉल पर ही सारी बातें याद कर लेना।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की अपनी ही एक अलग पाठशाला होती है, जहाँ किताबों से ज्यादा बातें पढ़ी जाती हैं, यादें पढ़ी जाती हैं और घंटी बजने से ज्यादा हंसी सुनाई देती है।

दोस्ती एक अनकहा रिश्ता, इस विषय पर हम आज कर रहे हैं कुछ बातें, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। दोस्तों याद कीजिए वो दिन जब दोस्तों के साथ छोटी सी बात भी बड़ी खुशी बन जाती थी। क्लास में हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतें, साथ में टिफिन बांटना और किसी खास वजह से बस हंसते ही रहना, हंसते ही रहना। वो दिन शायद वापस ना आए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।

दोस्त है तो जिंदगी की गंभीरता के बीच थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी हंसी और ढेर सारी मस्ती, ये सभी बातें आती हैं। और इस मस्ती भरी दोस्ती को याद दिलाता है ये अगला गीत।

तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम का समापन करते हुए बस यही कहना चाहेंगे, आज का दिन उन सभी दोस्तों के नाम जिन्होंने हमारी जिंदगी में हंसी के रंग भरे मुश्किल समय में हमारा साथ दिया और छोटी छोटी खुशियों को खास बना दिया।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज इस कार्यक्रम में विषय था दोस्ती एक अनकहा रिश्ता। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

शब्द रचना समीर की थी, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: सोनू निगम और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जानशीन में। कार्यक्रम में लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल।
1: मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर रखना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना।
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

मोहम्मद इरफान की आवाज में फिल्म एक विलन से, गीत और संगीत मिथुन का। अभी तक आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रांझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी।

तू कह रही है कि औरत जात को भरोसा नहीं करनी चाहिए, वो बात तेरी सही है, मगर मैं तो हीर की गैया कारे ढेर में चरावे क्यों लाया हूं, तो का कह रही है शेरनी रांझे से।

सी तू जाते भग जा, और अगर मेरो मालिक भूरा सिंह अगर जगे आयो तो तू बचावे बारो तो जा ढेर में कोई दिखे ना, एक पक्षी तो नजर आना रहो। रांझे को सुनकर के क्रोध आ गयो और क्या कह रहो है रांझो शेरनी से।

0: रांझे की बातन को सुन करके और भूरी को क्रोध तो आयो शेरनी को, वापस आ गई और आए करके भूरा सिंह जो सो रहे बाकू जगा रही है और क्यों का बात है काई को तेने मुझे सोते थे जगायो। तो बोले गैया चराबे कोई ग्वारी या डहर में आयो है और मेरे श्रोताओं में आपको बतावो चाहूं के भूरा सिंह की मुक्ति यानी मौत रांझे के हाथों थी। जैसे हीर को रांझो मिलो और रांझे को हीर मिली, ऐसे ही मालिक के यहां से रांझे के हाथों इस भूरा सिंह की मृत्यु लिखी हुई थी। तो जब शेरनी ने कही ग्वारिया गैया चरावे आयो है, तो भाई मालूम तो कोई ग्वारिया आज तक तो आयो ना है, वो ही आयो होगो। तो बोला चल चल चल सोन दे मुझे, मान की सोन दे यहां शेर बोलो तो गई यही तो चरा रो है, तोते तो कछु ना कह रो चरान दे भाई और चरो चल चरा चरू के गई है और अपनो घर चलो जागो वापस, मुझे तो सुन दे का लेनो देनो मेरो भागो। तो बाते त्रिया चरित्र जाने ना कोई और खसम मार के सती हुई। तो बनने की इस भूरा से बोली के लेन चूड़ी ने तो तू पहल ले और ला मैं ही जा करके देखूंगा ग्वारिया। शेर बोलो बोले होश में रे होश में, नहीं तरुआ में थे तेरी जवान खेच लूंगो, बैठ जा चुपचाप। मगर भाई स्त्री उकसा रही है, शेर जब बाहर निकल के गुफा से आयो तो जैसे रोज दहाड़ मारतो तो बादन दहाड़ मारी तो एक भी पक्षी नीचे दहाड़ के डर के मारे नीचे ना गिरो, क्यों के रांझे ने तो कदम के पेड़ पर मुंह करके बैठा लिए हैं। शेर बोलो दार में कार हो बेटा, मगर चलो। जब रांझो शेर के पास पहुंचो उछल कूद करतो भयो और शेर की और रांझे की जब नजर मिली, शेर की आधी ताकत रांझे के पास लौट गई। धीरे धीरे वो पास में आयो और आकर के रांझे से कहा कह रो भैया
1: कहा कह रो।

भूरा सिंह बोलो भैया, तू तखत हजारे को बादशाह है राजो, और मैं काले ढेर को बादशाह हूं। ठीक है, तो एक म्यान में दो तलवार ना रह सके, एक राज्य में दो बादशाह ना रह सके। तो ऐसो कर रांझे कि हम तुम दोनों खेत बहार लें, जाकू दे मालिक। तो मानी ठीक है। तो शेर बोलो कि देख भाई रांझे, एक बात है, तीन बार पहले मैं तो पे करूंगो। बोले जेऊ मंजूर है, मगर एक बात सुन मेरी, तू अभी स्त्री के पास से आ रहा है, उठ करके पहले स्नान करके आ, नहा धो के आ, और मालिक को कछु नाम ले, बाके बाद में मुंह से कुश्ती लड़वे की कोशिश करियो, और अगर या परिस्थिति में तेने मेरे शरीर से हाथ भी लगा दियो तो यहीं जल करके खाक है जाएगो। सज्जनों, संग स्नान करके नहाए धो करके आयो, और रांझे के सामने जब आयो तो रांझो बोलो, भूरा एक पांच नाम मालिक के और ले ले। भूरा ने सूरज नारायण की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ करके और पांच नाम मालिक के लिए, और बोलो कि हाँ भैया रांझे, अब तू तैयार रह जा। हाँ बोले, मैं तो तैयार हूं, तू आ जा, जो कछु होगी सो देखी जाएगी।

0: सज्जनों, रांझे ने पड़कर के बिस्मिल्ला और द्वागल बंसी से ही और शेर की गर्दन धड़ से अलग कर दी नी। तो रांझो शेरनी से क्या कह रहो भैया?
1: क्या कह रहो भैया,

0: शेरनी बोली, रांझे मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं, अरे मर को मर जान दे, अगर मैं तो मारूंगी तो मोए का मिलेगो, अरे भूरो ना मिलेगो तो कारो मिलेगो, कारो ना मिलेगो तो पीरो कर लूंगी, मगर यह ढेर में तो बहुत शेर है, चाहे जाए मैं कर लूंगी, मैं तो क्यों मारूं। इतनी बात सुन करके और रांझे को क्रोध आवे, जो बाके पास एक कंबर कंधा पे पड़ो भयो, बाने क्रोध में एक कंबर जो टुकड़ा हो बाके दो टुकड़ा कर दिए और करके और शेर के खून में भिगो करके और झूमर गैया के सींगन पे टांग दिए। झूमर से रांझो बोलो कि देख झूमर, ये कंबल ले जा करके और सिहाले में जा करके और हीर से कह दियो कि रांझो तो मर गयो, जन शेर ने खायो के चीते ने खायो हमें ना मालूम, हमें तो जे कंबर जो है खून से लिपटो भयो और कांटे करील में मिलो, सो हम तो हीर याकू ले आए हैं। तेरे सामने को सीन है कि शेरनी कहा के गई कि एक मरो ऐसे मर जान दे, दूजो कर लूंगी ढहर के माई, तो ऐसे ही हीर को है जाएगो जो वहां जाकर के अटकेड़े बाकी सगाई है गई है, तो बाको ने कहा तो मां है जाएगो, मैं तो जा मारो गयो लड़ाई में, तो इसलिए तू जा झूमर और जाकर के हीर से कह दियो कि रांझा तो ढेर में मर गया। रांझे को कहनो मान झूमर गैया ने और चल दी नहीं वहां से, और भी गैया बाके संग में चल दी नहीं। इधर क्या हो गए है कि जो हीर मां गम में बैठी भई कि मेरो रांझो मौत के मुंह में गैया शराबे के लिए गयो है, जिंदा लौट के आवे को कहना है, तो कछु सहेली आई और बोले हीर चल हमारे घर चल, तेरो मन तो बेलेगो, हमारे संग में बोलेंगे बतरांगे। तो हीर तो सहेली के यहां चली जाती है और गैया महल के पिछवाड़े दरवाजे पर जा करके और रमावे लगी है झूमर। जब झूमर रमाई तो हीर की मैया ने आवाज सुनी तो तुरंत दरवाजो खोलो, झूमर के सींगन में और कंबल रांझे को खून से सनो भयो और लिपट रहे हो। तो बाने झूमर से पूछी कि झूमर तेरो ग्वारिया कहाँ है? बोले मैया हमें ना पता भैया कहाँ है हमारो ग्वारिया, हम तो चर रहे जंगल में, यानी शेर ने खायो के चीते ने खायो, मगर मैया एक बात जी है कि जे कंबर हमें कांटे करीलन में लिपटो मिलो, तो या पहचान के ताई हम या कंबर को लेकर के आ गई है। जो ही मैया बड़ी खुश भई और खुश है करके बाने नौकर बुलाए और बोले जाओ रे पान मिठाई बांटो। तो इकट्ठे है करके जब पान मिठाई आई है तो मैया जो है घर घर मिठाई बांट रही है, घर घर मिठाई बांट रही है और बांटती बांटती बई घर जा पहुंची जा पे हीर बैठी है। जब मैया ने मां मिठाई दई तो हीर मैया से का कह रही है,
1: कह रही है भैया।

मेरे प्रिय श्रोताओ, महल में आकर के और माने 10-20 नौकर बुलाए और नौकरन को आदेश दियो के जाओ जंगल में जितने भी कांटे करील के पेड़ मिले सूखे उन्हें काट काट के और मेरे महल के पिछवाड़े डाल दो। महल के पिछवाड़े सबरे कांटे डलवा दिए और माने अपने

बखेर करके और एक चौमुखा दीपक बनाया और आटे को, जो हमारे ब्यास आदि में चार लो जरे का है, ऐसो चौमुखा दीपक बना करके और सात मंजिल मोती महल की छत पर पहुंच जाती है और मालिक से आदाब करके बोली, बोले हे मालिक, अगर राजा मर गया हो तो मेरा दीपक अध बीच में भुज जाए और अध बीच में ही मेरे प्राण निकस जाए, और अगर मेरा रांझो जिंदा है मालिक तो ये कांटे जमीन की तरफ मुख मोड़ जाए और गुलाब के फूल है जाए।

सज्जनों, कांटे जमीन की तरफ मुंह मोड़ गए और उन कांटे पे गुलाब को सो गद्दा बन गयो। बाके ऊपर आके हीर गिरी ना दीपक बुझो और वह दीपक को लेकर के और कांटे में से निकल करके दीपक को मालिक के आदाब में बाकू वहां रखो और मालिक की वाने वंदना करी करवे के बाद में और सीधी खिरक में आई और आकर के झूमर की पीठ पे हाथ फेर करके और बासे झूमर से बोली हीर के झूमर इतना बड़ा धोखा मेरे साथ तो जा मैं तुझको श्राप देती हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि तू जो है भिष्टा खाएगी। श्राप दे करके झूमर को और सीधी काले ढेर के लिए हीर चल देती है और जाकर के रांझे के ऊपर भैरा के पड़ी कि क्यों भाई मुझे मालूम है तेने मेरे साथ में इतनी बड़ी खेल खेलो झूठ बोली। इस बियाबान जंगल में तेरे सिवा और मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। एक काम कर तू अपना इश्क फरमा। रांझो बोलो कि हीर ऐसे गंदे अल्फाज अपनी जवान पे मत ला क्योंकि हम दोनों को दोजख में जगह ना मिलेगी। तो बोले चलो ठीक है अगर तू कह रही है मगर बियाबान जंगल में तो कोई है ना है मगर मैं या कदम के पेड़ पे चढ़ के देख लूं कि हमें कोई देख तो ना रहे। तो रांझो बाप पेड़ पे चढ़ो है पूरब की तरफ नजर मारी कोई ना दिखो।

0: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: बीप तो मैंने इसे मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाई फाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों वैज्ञानिक जानकारी पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में

0: विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हेरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की इलावेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।

लीजिए प्रस्तुत है इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज अपनी द्वितीय सभा प्रारंभ करेंगे संध्या 4:10 पर। सभा के आरंभ में ही हम आपको सुनवाएंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का विषय 2026 के समापन समारोह का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

बजकर 30 मिनट पर रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। अपराह्न 1:15 पर आप सुन सकते हैं झलकी। शीर्षक होगा साक्षात्कार, प्रस्तुति आर के पोद्दार की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ फोन इन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं अपराह्न 1:30 पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे अपराह्न 1:45 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित होगा अपराह्न 2:30 पर। प्रथम सभा समाप्त होगी अपराह्न 3 बजे। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी संध्या 5:30 पर। कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे विश्व सफाई दिवस और विश्वविद्यालय खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ब्रज साहित्यिक, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत करेंगे पंडित राकेश कुमार शास्त्री। संध्या वंदन कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:50 पर। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण का रखे ध्यान और मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्रोताओं के पसंद पर लोकगीतों का कार्यक्रम मन भावन। शाम सुहानी, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:35 पर। कार्यक्रम सुहानी तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं इस मास का गीत। गीत लिखा यतीन्द्र चतुर्वेदी ने, संगीत सुरेश गुप्ता का।

0: अभी तक आप सुन रहे थे इस मास का गीत समवेत स्वरों में। गीत रचना यतीन्द्र चतुर्वेदी की थी, संगीत सुरेश गुप्ता का।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका हाँ, मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।
7: आइए सुने देवेंद्र प्रसाद शर्मा की लिखी झलकी साक्षात्कार, प्रस्तुति RK पोद्दार की है।

0: इंजीनियर साहब, क्या समय हो गया है?
1: यही 10:30 हो गए।
0: कोई बात नहीं, इंटरव्यू का समय तो हमने 10 बजे रखा था ना, सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हुए हैं।
1: अब तक सारे उम्मीदवार भी आ ही गए होंगे।
0: ऐसा करिए, जरा पता तो लगाइए कितने उम्मीदवार आ गए हैं।
1: लीजिए अभी लगाता हूँ। बहादुर, बहादुर जी। जी साहब।
0: बहादुर, जरा देखकर तो आओ कितने लोग इंटरव्यू देने आ गए हैं।
2: जी अभी देखकर बताता हूँ।
0: इंजीनियर साहब, आपको एक बात मालूम है?
1: क्या?
0: यही कि हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अधिकतम योग्यता मैट्रिक रखी थी, किंतु मैट्रिक तो कोई आया ही नहीं। इंटर और बीए अधिकतर हैं, और इतना ही नहीं, एक तो एमए ने भी अप्लाई किया है। कितने एप्लीकेशंस हैं?
1: यही कोई 1,000।
0: 1,000? आपने बुलाया कितनों को है?
1: 21 को। हद हो गई है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि क्या कहा जाए। इसी पोस्ट की बात कीजिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस पोस्ट के लिए लड़कियां भी अप्लाई करेंगी, किंतु लड़कियों ने भी अप्लाई किया है।
0: ओह, आई सी।
1: जी हाँ, हमने 2-3 को बुलाया भी है।
2: जी साहब।
0: बहादुर, कितने लोग आ गए?
2: जी 3।
0: बस 3? अच्छा ठीक है, तो इंजीनियर साहब, बुलाया जाए ना इन लोगों को।
1: हाँ हाँ, जल्दी काम निपटा दिया जाए, वही अच्छा है। अच्छा बहादुर, जाओ और रमेश को भेजो।
2: जी साहब।
0: इंजीनियर साहब, आप तो ऐसा करिए, कैंडिडेट से उनकी योग्यताओं के विषय में प्रश्न करें, और मैं उनकी हॉबीज के बारे में पूछूंगी।
1: ठीक है।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, आइए आइए रमेश जी, तशरीफ लाइए।
3: जी धन्यवाद।
0: तो आप एमए हैं?
3: जी हाँ।
0: एमए में आपने कौन सी डिवीजन प्राप्त की?
3: जी अब जी 3rd डिवीजन मैडम। वो जरा ऐसा हुआ मैडम कि परीक्षा के दिनों में मुझे जरा जुकाम हो गया था। ये समझिए कि परीक्षा भवन में दिनों दिन छीके ही छीके आ रही थी, और ये समझिए मैडम कि जो भी कुछ याद किया था ना, सब भूल गया। अब वरना अपनी तैयारी तो फर्स्ट क्लास की थी।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमें आपसे बहुत सहानुभूति है रमेश जी। आपको ये पता ही होगा कि ये पोस्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है।
3: हाँ जी, मुझे पता है।
0: तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें काम क्या करना है।
3: हाँ जी, मुझे पता है। ये गली मोहल्लों में सफाई कर्मचारियों के काम को देखना भालना आदि।
1: तो आप एमए होने के बावजूद ये काम करना पसंद करेंगे?
3: हाँ, मजबूरी है सर।
1: किंतु इस पोस्ट के लिए चुनाव तो हम योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ही करेंगे। इस काम के अनुकूल यदि कोई अनुभव रखते हो तो बताएं।
3: अब इस पोस्ट का अनुभव तो खैर साहब तभी होगा जब आप ये नौकरी मुझे दे दोगे। मगर यदि आप ठीक इसी तरह के काम को अनुभव मानो, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा काम मैंने काफी दिनों तक किया है।
0: क्या आपको ये काम आता है? आपका मतलब है कि आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम पहले भी कभी किया है?
3: जी मैंने अर्ज किया है कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम तो नहीं किया, पर कुछ ऐसा ही काम किया है। दरअसल मैं सोशल वर्कर रह चुका हूँ, और आप जानते हैं कि इसमें कुछ सफाई का काम भी करना होता है। एक समाज सेवक के रूप में अब तक मैं अनेक मोहल्लों की सफाई कर चुका हूँ।
0: ओह, आई सी।
3: और हाँ, मैंने अनेक समाज सेवी संस्थाओं की ओर से कई बार श्रमदान में भाग लिया है।
1: लेकिन इस पोस्ट के लिए मेहनत का ही नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी अनुभव है।
3: हाँ जी हाँ, कॉलेज के दिनों में मैंने कई बार स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की थी। लड़के मेरी मुट्ठी में इस तरह रहते थे कि कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरर्स मुझसे घबराते थे। आपको अगर कोई जुलूस निकलवाना हो तो अपनी पूरी योग्यता प्रमाणित कर सकता हूँ।
0: इंजीनियर साहब, ये तो बड़े प्रतिभावान व्यक्ति हैं। अच्छा रमेश जी, धन्यवाद, आप जा सकते हैं।
3: अजी तो फिर मैं आशा ही लेकर जाऊँ ना?
0: हम डाक से अपना निर्णय भेज देंगे।
3: अच्छा जी, लेकिन आप मेरे पक्ष में ही निर्णय लीजिएगा, मैं बड़े काम का आदमी हूँ। अच्छा, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: यह तो बड़ा भयंकर लड़का है। पहले कह रहा था जुकाम की वजह से परीक्षा में सब कुछ भूल गया था, इसीलिए फर्स्ट क्लास लेते लेते रह गया। शायद इन्हीं खुराफातों की वजह से थर्ड क्लास आई होगी। लीडरी के शौक ने इस साहबजादे को कहीं का ना छोड़ा।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा इंजीनियर साहब, हम ऐसे आदमी को लगाकर कर्मचारियों में जुकाम नहीं फैलाना चाहते। बहादुर बहादुर बहादुर।
2: जी साहब।
1: सुरेंद्र को बुलाओ।
0: ये शायद बीए पास लड़का है।
1: जी हाँ।
3: नमस्ते मैडम। नमस्ते सर।
1: नमस्ते, आइए बैठिए।
3: धन्यवाद मैडम।
1: तो आपने बीए किया है?
3: जी मैडम। जी सर।
1: बीए में आपके पास कौन कौन से विषय थे मिस्टर सुरेंद्र?
3: जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी।
1: अच्छा, आपके पास संस्कृत भी थी?
3: जी हाँ।
0: वाह, लगता है कि आपकी बुद्धि काफी तीव्र है।
3: जी सर। जी मैडम, आपकी दया है वरना मैं।
0: जरा जरा आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए,
3: हॉबीज? यह क्या होता है साहब?
0: आपकी रुचियां क्या हैं?
3: आपका मतलब शायद पसंद से तो नहीं?
0: जी हाँ, वही है।
3: जी, मुझे हिंदी की फिल्में बहुत पसंद हैं। वैसे सर, कभी कभी अंग्रेजी की फिल्म भी देख लेता हूँ। वो ऐसा एहसास कि हमारा शहर बहुत छोटा है ना, तो यह इतवार को ही अंग्रेजी की फिल्म आती है, इसलिए हफ्ते में एक ही अंग्रेजी फिल्म देख पाता हूँ। और हिंदी की फिल्म हफ्ते में यही कोई 3 या 4 देख ही लेता हूँ।
0: इतनी फिल्में देखने के लिए पैसा कहाँ से मिल पाता है?
3: जी, मेरे पिताजी दुकानदार हैं सर, दिन में एक बार तो मुझे दुकान पर जाना ही पड़ता है। और जब कभी भी फिल्म देखने की इच्छा करती है तो तिजोरी में से है।
0: अच्छा, ठीक है। जरा यह तो बताइए कि आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जबकि आपकी इतनी चलती हुई दुकान है, तो
3: जी
0: आपने यह नौकरी पसंद क्यों की?
3: जी सर, बात यह है कि जब कभी चोरी पकड़ी जाती है तो पिताजी मारते हैं और कहते हैं कि अपनी कमाई करके फिल्म देखा कर, अब मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ेगी, वरना मैं तो एक्टर बनने लायक था। मैंने रामलीला में कई बार रंगत का पार्ट किया है सर। मेरे पास पैसा होता तो बंबई जाकर किसी फिल्म में एक्टर बन जाता।
1: अच्छा, आप जाइए। यदि आपको इस पद के लिए योग्य समझा गया तो डाक से आपको हम खबर कर देंगे।
3: अच्छा मैडम, जरा मुझ पर जरूर मेहरबानी रखिएगा। अगर बंबई जाने लायक पैसा इस नौकरी से बटोर पाया तो आपको भी बंबई ले चलूंगा।
1: बड़ा मूर्ख आदमी है।
0: बहादुर बहादुर।
2: जी साहब।
1: सुनीता को बुलाओ।
0: मैडम, अगर सभी कैंडिडेट्स इसी तरह के हुए तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल से हो पाएगा। एमए और बीए को तो परख लिया, अब यह कैंडिडेट क्या है?
1: इंटर है।
4: नमस्ते जी।
1: नमस्ते, आप कौन है?
4: सुनीता जी।
1: सुनीता जी, लेकिन हम लड़कों को ही इस पद के लिए उपयुक्त समझते हैं।
4: क्यों जी, लड़कों ने क्या इस नौकरी का ठेका ले रखा है?
1: नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल इस नौकरी के लिए हमें लड़का ही लेना है, काम ही जो कुछ ऐसा है।
4: रहने दो जी लड़कों को। आज के जमाने में ऐसा कौन सा काम है जिसे हम लड़कियां नहीं कर सकती? हमारी प्राइम मिनिस्टर को ही देख लो। अजी दूर क्यों जाएं? आप भी तो कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और मैं भी बढ़िया काम कर सकती हूँ।
0: वह तो ठीक है, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम तो पुरुषों के ही बलबूते का है।
4: राख डालो जी पुरुषों पर। क्यों प्रेसिडेंट जी, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम औरतें नहीं कर सकती? क्या हम हजारों साल से सफाई का काम नहीं करती आ रहे? जमीन से लेकर जेवों तक को साफ करने में हम लोग माहिर हैं।
1: वो तो ठीक है, लेकिन
4: लेकिन लेकिन कुछ नहीं जी।
1: सुनीता जी, आप इंटरव्यू देने आई हैं या बहस करने?
4: जी इंटरव्यू देने।
1: तो सिर्फ जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए।
4: अच्छा जी,
1: आप पूछिए इंजीनियर साहब।
0: हाँ, आपकी हॉबीज क्या हैं?
4: यही सीना, पिरोना, कढ़ाई, बुनाई, झाड़ना, पोंछना और नॉवल पढ़ना।
0: प्रेमचंद का उपन्यास कोई आपने पढ़ा है?
4: ये प्रेमचंद कौन है जी?
0: अच्छा, गुरुदत्त का कोई उपन्यास पढ़ा है?
4: अजी वो कोई उपन्यासकार थोड़ी ना था, वो तो फिल्मी हीरो था जी। मैंने उसकी बहुत सी फिल्में देखी हैं। मेरा फेवरेट हीरो था। वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करता था। हाय, अब तो वह कब का चला गया होगा। कैसा भोला भाला था। और

0: था
1: अच्छा अच्छा अब आप रोना बंद कीजिए। आप ये बताइए कि आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो आप सफाई कर्मचारियों से कैसे काम लेंगी?
0: खूब काम करवाऊंगी, काम कैसे नहीं करेंगे, ठीक नहीं कर दूंगी।
2: आपको हर काम में जोर जबरदस्ती दिखाने के सिवाय और भी कुछ आता है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ आता है, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना वगैरह वगैरह।
1: तो फिर यही काम क्यों नहीं करती, फिर यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आ गई?
0: अरे सर, वो तो मैं दिन भर ही करती हूँ।
1: तो फिर यहाँ का काम कैसे करोगी?
0: जी जैसे आप करते हैं और कैसे यहाँ आप भी तो कभी कभी यहाँ दिखाई देते हैं।
2: ठीक है, अब आप जाइए।
3: उफ, उफ, ये साक्षात्कार भी क्या बला है।
2: इंजीनियर साहब, देख लिया ना आपने, आपके ही मुंह पर कह गए, अरे ये साक्षात्कार तो अपना ही हो गया।
4: ये थी देवेंद्र प्रसाद शर्मा की लिखी झलकी साक्षात्कार। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे मनमोहन गुप्ता, वीणा शर्मा, रत्नेश कुमार, सत्यनारायण शर्मा, महेश चंद्र अग्रवाल और कुसुम कुलश्रेष्ठ। इसके प्रस्तुतकर्ता थे आर के पोद्दार।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह जी। ओपी सिंह जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार देवराज जी, और उन सभी श्रोताओं को जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, चाहे फोन कॉल के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर पत्रों के माध्यम से, उन सभी को बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिवादन। और उनकी प्रतिक्रियाएं जब तक हमारे पास आए, तब तक थोड़ी सी बात इस संदर्भ में कर लेते हैं कि भारतीय संस्कृति त्योहारों और पर्वों की संस्कृति तो है ही, लेकिन कर्म की भी संस्कृति है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें विगत एक दशक से अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो समाज के बिल्कुल जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन जिनको हम तवज्जो नहीं देते थे।
0: जी।
1: मैं बात दरअसल स्वच्छता की बात कर रहा हूँ। तो जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए,
0: जी,
1: तो चाहे स्वच्छता ही
0: सेवा
1: है या सेवा ही संकल्प है, तो कर्म की प्रधानता, श्रम की महत्ता और जीवन में कुछ करने की दूसरों के लिए एक प्रेरणा हम सबको, हम देखते हैं कि किसी न किसी माध्यम से मिलती रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक

0: कहा भी गया है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है,
1: जी
0: और अगर आसपास अगर हम अपने स्वच्छता रखते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं और अच्छी सेहत सभी लोगों में पनपती है।
1: जी और इस बात की देवराज जी साइंस भी पुष्टि करता है,
0: जी
1: और अब तो रिसर्च भी इस तरह की आ गई है कि अगर हम अपने आसपास के परिवेश को,
0: जी
1: घर को, और कोरोना में हमने देखा कि अगर सिर्फ हाथों को ही साफ कर लेते कोई
0: बिल्कुल
1: भी खाने से पहले,
0: पहले
1: तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो गंदगी के माध्यम से, प्रदूषित पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो जा सकती हैं,
0: जी
1: उन पे बहुत कुछ हम जो है नियंत्रण पा लेते हैं।
0: बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जो अनजाने में हमें छू सकती हैं या हम उससे संक्रमित हो सकते हैं, तो
1: जी
0: हाथ धोने की जो हमारी
1: आदत
0: प्रचलन
1: है,
0: है जी वो बहुत काम आती है हमारे, और जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य अगर ठीक है
0: जी
1: व्यक्ति का, व्यक्ति से समाज का और समाज से राष्ट्र का, तो हम एक परिवार में अगर कोई बीमार होता है
0: जी
1: तो निश्चित मानिए कि वो सिर्फ व्यक्ति बीमार नहीं होता, उस व्यक्ति पर होने वाला खर्च,
0: जी
1: उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां न निभाने की वजह से परिवार पे आने वाली परेशानी,
0: जी
1: और उस परेशानी के माध्यम से जो लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है,
0: जी
1: तो पूरे घर का वातावरण खराब होता है, पूरे आसपास का परिवेश प्रभावित होता है, और ये सब हम बहुत कुछ रोक सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार ना हो, कि हम अपने आसपास की परिवेश की सफाई रख लें,
0: बिल्कुल
1: बरसात होती है तो उस पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा हुआ तो मच्छर पनपेंगे,
0: जी
1: मक्खी पनपेगी, आसपास की सफाई कर लें तो मक्खियाँ नहीं होंगी, तो बहुत सारी ऐसे जो गंदगी की वजह से जो चीज़ें होती हैं,
0: जी
1: डिसेंट्री है, तो ये सारी चीज़ें हम उन पर काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं उसमें
0: बिल्कुल
1: भी।
0: सही कहा आपने, एक व्यक्ति के बीमार होने से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है, और परिवार प्रभावित होता है तो हमारा जो समाज है वो भी इससे अछूता नहीं रहता है।
1: जी, और देखो इसी तरह का एक पत्र मेरे पास पड़ा है,
0: जी जी पढ़ दीजिए।
1: वो ही है, एक पत्र हमारे हर बार राही जी का जरूर आ जाता है, तो
0: बिल्कुल
1: प्रकाश राही जी गोवर्धन से ये लिख रहे हैं कि इस बार आपने स्वास्थ्य में फ्लू पे अच्छी चर्चा की,
0: जी
1: और उसमें डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो वायरल है,
0: जी
1: बरसात के मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इसीलिए ज़्यादा पनप जाते हैं क्योंकि बरसात के इकट्ठे होने वाले पानी से आसपास गंदगी हो ही जाती है, अगर हम ध्यान
0: जी
1: नहीं देते तो पानी रुकेगा, गड्ढों में मक्खी मच्छर पनपेंगे, और उनसे फिर वो बीमारियों के रूप में हमें एक तरह से रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीमारी आती है,
0: बिल्कुल
1: तो ज़रूरी है कि हम आसपास के परिवेश को साफ कर लें, ये राही जी कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब की बात को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जो बातचीत सुनवाई
0: जी
1: वायरल और फ्लू
0: जी
1: पर गुरुवार को 12 बजे, वो इनको पसंद आई, और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। एक तो इन्होंने ये लिखा है, दूसरा ये भी लिखा है कि कुछ और कार्यक्रम ऐसे जिसमें समाज के अच्छे लोग, गणमान्य लोग आएं और अपनी हिस्सेदारी निभाएं, वो भी आप नई शुरू कर सकते हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं उसमें।
0: और अब एक फोन आ रहा है सिंह साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है इनका, कौन है देखिए।
0: हेलो,
2: आदरणीय दीक्षित जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार। जी
0: नमस्कार, आज हमारे साथ कार्यक्रम में ओपी सिंह जी हैं।
2: मिल्खा सिंह साहब,
1: प्रणाम कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल ठीक हूँ सर, और हम जानना चाहेंगे हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है।
1: बहुत आनंदित है, और आपके जिस फोन का इंतजार कर रहे थे वो आपका फोन आ गया, आप
2: मैंने
1: भी
2: कई अप
1: स्वस्थ और
2: मैंने कई
1: आनंदित
2: अपने
1: होंगे।
2: जी मैंने कई अपनी बात फोन लगाया है, लेकिन
1: हाँ
2: मुझे खेद है कि मुझे शिकायत भरी बातचीत करनी पड़ेगी आपसे।
1: नहीं बिल्कुल, करिए, पहले शुभ नाम जरूर बता दीजिए।
0: जी मैं शिकायत का तो
2: आपका ब्रज
0: स्वागत है।
2: रेडियो जी मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंदौली से बोल रहा हूँ सिंह
1: जी,
2: साहब।
1: लवानिया जी आपका स्वागत करते हैं आपकी शिकायतों के साथ। जी
2: कुछ कार्यक्रम आपके ऐसे हैं जिनमें जो फोन इन कार्यक्रम है, जो व्हाट्सएप संबंधित कार्यक्रम है,
0: जी
2: इनमें जहाँ तक हेलो आकाशवाणी जो आपका सबसे पॉपुलर कार्यक्रम है
1: हाँ
2: उसमें श्रोताओं की हमेशा शिकायत रहती है, रहेगी और आज भी है। अगर मैं आपको समय गिनाऊं तो मेरी 7 बार रिंग गई है आज,
0: जी
1: हाँ
2: लेकिन सर मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ। और हमारे एक और मित्र हैं अशोक यादव अड़िंग से,
1: हाँ
0: जी
2: उनका भी यही कहना था कि सर मेरा फोन पिछले लगातार 2-3 बार से नहीं
1: देवराज
2: चलाती
1: जी
2: रहती है।
1: बताएंगे, वो बैठे हुए हैं, बताइए देवराज जी
0: देखिए
1: आज क्यों।
0: लवानिया साहब, हमने पहले भी आपसे ये गुजारिश की हुई है कि हमारे एंड पर इस प्रकार की कोई खराबी नहीं है, ये खराबी है जो हमारी टेलीफोन लाइन है उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है जिससे कि हमारे श्रोता लगातार फोन की घंटी सुनते हैं व्यस्त होने के बाद भी।
1: एक कॉल होता रहता है और घंटी
0: जी
1: इनको

0: आती रही
1: जी, हम
0: तो।
1: भी आपसे ये नहीं कहते कि ये खराबी आपकी तरफ से है,
2: जी
1: लेकिन हमारा आपसे सुझाव है इस कार्यक्रम के माध्यम से उप विभाग तक ये बात जरूर पहुंचाएं
0: नहीं नहीं
1: कि हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम है ये,
0: ये
1: और छोटा कंफ्यूजन हो जाता।
0: जन्माष्टमी पर ये बात हमने रखी थी जब हमने फोन लाइन बुक
2: जी
0: कराई थी, और वो खुद भी ये थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ये बात हमने लिख के दी है उनको, और आप कह रहे हैं तो फिर से एक बार इसको दिखा, लेकिन ये जो समस्या है इसका समाधान कराएंगे आप लवानिया जी, आपकी शिकायत जायज है और हम
1: देखिए सर,
0: जरूर
1: और
0: जरूर इस बात को
1: गीत
0: टेकअप
1: बात और
0: करेंगे।
1: एसएमएस में भी,
0: जी
1: गीत बात और एसएमएस में भी आज भी मैंने 2 बार मैसेज भेजा लेकिन मेरा मैसेज शामिल नहीं हुआ। हम लोग भी तो आपके श्रोता ही
0: हाँ
1: हैं।
0: नहीं नहीं आप श्रोता ही नहीं, हमारे बड़े सुधी श्रोता हैं और पुराने श्रोता हैं
2: जी
0: आप,
2: जी
0: इस बात को हम मानते हैं, और लवानिया जी ऐसा नहीं है, इसी सिस्टम में अब सबसे पहले आज आपसे बात हो रही है और
2: जी
0: आपकी बात सुन भी रहे हैं, परेशान ना हो और ये बात को जरूर रखा जाएगा, बाकी आप जुड़े फोन के माध्यम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: एक और फोन आ रहा है।
0: जी
2: हेलो,
3: हेलो,
2: स्वागत है
3: नमस्कार
2: कार्यक्रम
3: सर।
2: में आपका।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
3: सर मैं रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ, जिरौली सासली से।
2: जी जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रमों के बारे में?
3: सर जी आपके प्रोग्राम तो वाकई बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं सर।
0: जी।
3: मैं ये कहना चाहूंगा जो सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आता है सर एक,
2: जी
3: तो उसका कुछ उस जैसा एक और प्रोग्राम हो कोई पुराने गीतों का।
0: अच्छा, कहाँ पर?
3: जी सुबह 7 बजे दे देना सर।
0: हाँ
3: तो एक और आप दिन में कर सके या रात में कर सके, आधा घंटे का और कोई।
0: चलिए,
2: यानी उस कार्यक्रम से मन नहीं भरता है।
0: हाँ, इस तरह का देखेंगे कि हमारी जो दूसरी सभा का वो है आप 10 से 12 के बीच में देवराज जी,
2: जी
0: कहीं अगर जब कभी परिवर्तन होगा तो ये एक अच्छा सुझाव है, तो वहाँ रखा जा
3: गाने
0: सकता
3: जो
0: है।
3: होते हैं उसमें
0: जी जी
3: उसमें एवरग्रीन हमेशा जो गाने हैं जो वो गाने अच्छे लगते हैं।
0: चलिए चलिए, आपके सुझाव को हम नोट करते हैं और जब भी परिवर्तन होगा तो इस तरह का कुछ बन पड़ेगा तो जरूर करेंगे आपका।
2: और कुछ
3: सर एक
2: कहना
3: बात
2: चाहते
3: और
2: हैं?
3: कहना, हाँ सर एक बात और कहना चाहूंगा मैं।
2: जी
0: जी
3: जैसे कि 6 दिन दे रहे हैं आप हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम को,
2: जी
3: तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ना 3 दिन 1-1 घंटे का कर दिया जाए।
0: ये थोड़ा मुश्किल होता है कि एक ही समय पर 1 घंटा निकालना, आप देखो आप ही सुझाव दे रहे हैं कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, तो 1 घंटे में फिर क्या है कि फिर 3 दिन किसी और चीज़ से हम वंचित हो जाएंगे, तो इससे बेहतर यही सोचा गया कि भाई आधा घंटे हर रोज़ एक ये कार्यक्रम हमारे
2: जी,
0: श्रोताओं तक पहुँचे, तो एक सामयिकता बनी रहती है उसमें।
2: और समायोजन बहुत जरूरी है।
3: जी।
0: बाकी आप जुड़े फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। हेलो, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
4: एस के चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, आरजा करवानी मथुरा से।
0: जी,
2: स्वागत है। ठीक
0: कैसे हैं चतुर्वेदी जी?
4: ठाक, अच्छा हूँ बिल्कुल।
0: चलिए बढ़िया, बने रहें, मस्त बने रहें, दुरुस्त बने रहें, स्वस्थ बने रहें।
4: आपसे बात करके तो वैसे ही ताजगी आ जाती है।
0: क्या बात है, क्या
2: जी
0: बात है। जल्दी से प्रतिक्रिया दे दे, समय थोड़ा कम है।
4: हाँ, मैं ये कह रहा था
0: जी,
4: आपका जो आकाशवाणी है ये स्टेशन मथुरा का,
0: हाँ
4: ये काफी पॉपुलर हो गया, इसके प्रोग्राम बड़े सटीक आते हैं।
2: जी
0: अच्छा,
4: लेकिन एक बात है, एक कव्वालियों का प्रोग्राम एक होना चाहिए।
0: चलिए ये अच्छा सुझाव है, इस पर भी गौर करेंगे, विचार
4: हाँ
0: करेंगे।
2: अच्छा चतुर्वेदी जी, ये कव्वालियाँ जो आप सुनना चाहते हैं वो फिल्मी कव्वालियाँ या गैर फिल्मी कव्वालियाँ?
4: फिल्मी कव्वालियाँ भी हों गैर हों, जैसे कि यहाँ से चला गया कुतवाल करके काया की कुतवाली।
2: जी, गैर
4: आप
2: फिल्मी कव्वालियों का
4: इसे
2: तो कार्यक्रम हमारे यहाँ से जारी है, हफ्ते में 1 दिन होता है।
4: हाँ फिल्मी उसमें शामिल कर रहे हैं।
2: जी
0: चलिए फिल्मी भी कर लेंगे, उसको अल्टरनेट कर लेंगे
2: जी
0: उसमें,
2: जी
0: एक बार वो एक बार वो,
2: जी
0: है ना। बाकी आप जुड़े और फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री
2: जय
0: कृष्ण।
2: श्री कृष्ण। तो सिंह साहब, चलते चलते एक SMS और आया हुआ है हमारे
0: जी
2: पास, ये भेज रहे हैं विकास भारद्वाज रानेरा छाता से।
0: क्या लिखते हैं?
2: इन्होंने लिखा है, एक पहले आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ करता था साज और आवाज, जिसमें हम गाने की धुन पहले सुनते थे और फिर वही गीत हमें सुनवाया जाता था, तो क्या ये कार्यक्रम पुनः शुरू किया जा सकता है? ऐसी एक फरमाइश इन्होंने की है।
0: पहले भी इस तरह के पत्र तो आते रहे
2: जी
0: और लोगों ने इस बात को उठाते रहे,
2: जी
0: तो व्यवस्था आप ही इस पर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या संभव है इसमें।
2: जी जी बिल्कुल, अगर जैसा ही हमारा चार्ट जो होता है फिक्स पॉइंट चार्ट, उसमें अगर परिवर्तन होता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू किया जा सकता
0: जी,
2: है
0: जी। और उपलब्धता चूंकि बहुत सारा अब सिस्टम बदल गया है तो

0: और उसकी जो उपलब्धता वो भी देखनी पड़ेगी।
1: जी
0: लेकिन सुझाव है और श्रोता ने हमारे ने लिखा है तो ये चीजें कहते तो रहते ही
1: जी
0: लोग,
1: बिल्कुल
0: लेकिन संभव हुआ तो जरूर देखेंगे इसमें। और अब तो मुझे लगता हूँ कि समय उतना ही है कि पता बता दिया जाए।
1: जी, हमारे इस कार्यक्रम का पता रहेगा श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003, और जो श्रोता हमें फोन करना चाहते हैं उनके लिए हम नंबर बता देते हैं, 0565 मथुरा का एसटीडी कोड लगाएं और नंबर लगाएं 2530135, और फोन करने का समय है सिंह साहब शुक्रवार के दिन 12:30 से।
0: जरूर जुड़े हमारे कार्यक्रम में, उन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुझाव है और क्या चाहते हैं, और शिकायत भी अगर है, जिन्हें कोई शिकायत है तो वो भी हम तक आप जरूर भेजें। हर शुक्रवार हम 12:30 बजे बैठते हैं, आपसे संवाद करते हैं। हमें इंतजार रहेगा कि अगले हफ्ते आप हमसे जरूर लेंगे। फिलहाल विदा लें।
1: जी बिल्कुल, और नंबर एक बार फिर से सुन लें, हमारा नंबर है 94-122-25-575।
0: तो अभी विदा लेते हैं।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में आगे आइए, सुनते हैं सुखविंदर सिंह की आवाज में ये गीत फिल्म टशन से। गीत लिखा पीयूष मिश्रा ने, संगीत विशाल शेखर का।

0: to their credit history, as she became the country's first athlete to secure an Asian Games bronze medal after reaching the women's traditional 60-kilogram semifinals at the Games. Suchika delivered a composed performance against Mongolia's Elten Chimeg Baigalma. With this win, Suchika advanced to the semifinal and confirmed India's first medal in martial arts. In hockey, the Indian women's team began the Asian Games campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium today. Deepika Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3, while Lal Than Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Jiayu topped the heats while Japan's Hidekalu Takehira finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joined members of the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will organize at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of the Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. An IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता

0: देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका

0: तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम मैंने दिल तुझको दिया। गीत लिखा था फैज अनवर ने, संगीत डब्बू मलिक का।

केके की आवाज में आपने सुना ये गीत फिल्म राज 3 से। गीत लिखा संजय मासूम ने, संगीत जीत गांगुली का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म जुड़वा से। गीत रचना देव कोहली की थी, संगीत अनु मलिक का।

आप सुन रही थी सुजाता और उदित नारायण को फिल्म हलचल में। गीत समीर का, संगीत विद्यासागर का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजों में ये गीत फिल्म मन से। संगीत निर्देशन संजीव दर्शन का, गीत रचना समीर की।

उदित नारायण और हेमा सरदेसाई के गाए फिल्म मन के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में दिन में 4:08 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 4:09 और 25 सेकंड हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके समापन समारोह का सीधा प्रसारण।

0: आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आइए विज्ञान भवन चलें।
1: नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल सभागार से आपको पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए उपस्थित हैं। आज समापन समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं।
2: Welcome to the iconic plenary hall of the Vigyan Bhavan here at Delhi for the National Green Tribunal's 2-day international conference on the future of environment and climate dynamics. Giving the welcome speech is the Honorable Sri Justice Prakash Srivastav ji, chairperson of the National Green Tribunal.
3: And future generations. The second session turned our attention to the future of environmental law and governance. In this session, we reflected on sustainable and livable cities, human rights, clean energy, and green infrastructure. The message was clear. Environmental law must remain responsive and forward-looking, while embracing technology, innovation, and sustainable finance, and ensuring just transition. The third session widened the lens to the planetary scale of environmental challenges, climate change, biodiversity loss, land degradation, pollution, water scarcity, and ecosystem decline are not the separate problems. They are interconnected and they do not respect political boundaries. Regional cooperation, transboundary mechanism, and international collaboration are therefore essential. Finally, the fourth session brought us to the most important question: what do we do next? The discussions on modernizing forest governance, strengthening community participation, and creating clear roadmaps reminded us that the broad commitments must ultimately become clearer priorities, measurable goals, and sustainable implementation. This brings us to the clear message of the conference. The future of environmental protection will depend not merely on identifying challenges, but on our ability to build laws, institutions, and partnerships capable of responding to them. As

0: we conclude, I express my heartfelt gratitude to all the distinguished dignitaries, honorable judges, international delegates, scholars, experts, senior advocates, members of the National Green Tribunal Bar Association, government representatives, civil society, media, and most importantly, our young students and researchers. I am particularly grateful to our international participants from across the world. Your presence has reinforced the understanding that environmental justice is a shared global endeavor. My sincere thanks also to UNEP and EDB for their technical support, to the Honorable Supreme Court of India, High Court of Delhi, MOEF and CC, Government of India, our technical team, registry, and every person who worked behind the scenes to make this conference possible. As we reflect on the way forward, I am reminded of the word of David Attenborough. What we do now and in the next few years will profoundly impact the next few thousand years. Conferences such as this remind us that in the end, the law of environment is the law of our shared survival. Let us therefore leave this gathering with a renewed resolve to work for an environmental future that is cleaner, fairer, and more resilient. Let our laws, our institutions, our conduct reflect not only knowledge, but conscience. Thank you once again for your gracious presence and participation. Thank you, and Jai Hind.
1: Swagat Sambodhan. मेजबान राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, आपने स्वागत संबोधन दिया और मंच पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मौजूद हैं माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बी वी नागरत्ना जी और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी.
2: Bharat has once again shown the world what it means to move towards a sustainable and a developed world while keeping our roots intact, while keeping the environment as our priority and making sure that we leave a better world for the future. Having fulfilled her promise made at the Paris Climate Summit way before the set timeline, India has become one of the select few nations to show the world a model of nation building where environment protection and ecological balance is at the core of policy making and executive actions.
1: इस दो दिन के सम्मेलन में विश्व भर के 70 देशों के न्यायविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी और एशियाई विकास बैंक एडीबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया. इस पूरे आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा किया गया है. इस पूरे आयोजन को जो भारत का एक विशिष्ट वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी.
2: And now, Chairperson, Honorable Justice, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी will felicitate the Honorable President of India, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू.
3: प्रगति की जड़ें प्रकृति में गहरी होंगी. We also would like to welcome our Honorable Minister, sir, welcoming Shri Manohar Lal ji, माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री. शहरी विकास, आधारभूत संरचना और ऊर्जा, इन तीनों के संगम पर उनका नेतृत्व भारत की सतत एवं समावेशी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण आधार है.
1: और स्वागत हो रहा है माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी का.
3: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Whose presence, ladies and gentlemen, brings the wisdom of our highest judiciary to the evolving discourse.

0: Of global regulation requiring states to account for the consequences of their actions beyond their own territorial limits. The international community's engagement with climate change has acquired institutional urgency through the United Nations Framework Convention on Climate Change and its annual conferences of the parties. In that sense, environmental protection has become an arena in which national action and international responsibility are inseparable. The discussions at this conference have reinforced precisely this point. Rivers, forests, oceans, air, and ecosystems do not recognize political boundaries. Climate change, biodiversity loss, pollution, land degradation, and water scarcity are interconnected challenges, and their effective management depends upon cooperation between jurisdictions, sharing of knowledge and resources, and equitable responsibility sharing among nations inter se. Perhaps then the five elements of nature, which I referred to earlier, may also become pancha sankalp, or five commitments that environment leadership demands of us. The steadiness of earth, the adaptability of water, the urgency of fire, the openness of air, and the breadth of space. The environmental challenges of our time require all five. This conference, I hope, has provided a valuable opportunity for engagement across jurisdictions and traditions, and an exchange of valuable experiences. I wish all of you continued wisdom and strength in the important work that lies ahead of us. Thank you for your kind attention. Namaskar.
1: ये थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, आपका संबोधन हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पंच सिद्धांतों की बात की, साथ ही उन्होंने पंच संकल्प का भी जिक्र किया कि किस तरह से दुनिया में पंच संकल्प के जरिए पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और जिस तरह से ये सम्मेलन हुआ, यहाँ पर दो दिन के सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और अब इस समय यहाँ पर स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है, और हमारे सभी जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो खड़े हो गए हैं और स्मारिका को भेंट कर रहे हैं।
2: Shri Manohar Lal, the Honorable UN Minister, releasing the souvenir of the National Green Tribunal and presenting the first copy to the Honorable President Srimati Draupadi Murmu. A commitment by India for the future of the world, of bringing every aspect together, of bringing diplomats, researchers, scientists, scholars together for the fact that the future of humanity shall be shared. Now, the time has come for the speech by Honorable Minister Shri Manohar Lal Ji, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power. Shri Manohar Lal Ji will now address this August gathering.
3: तो माननीय मंत्री जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं, और मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ पावर।
4: महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जस्टिस श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, मान्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मान्य अध्यक्ष श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेज ऑफ हाई कोर्ट, देश विदेश से पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज, देवी और सज्जनों नमस्कार। मुझे लगता है कि आज बहुत सही समय पर मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला है।

आज ही मैं अमेरिका से लौटा हूं, जहां ह्यूस्टन में G20 एनर्जी अबंडेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। वहां भी हमारी चर्चा के केंद्र में यही प्रश्न था कि दुनिया की बढ़ती ऊर्जा और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक ऐसा फ्यूचर कैसे बनाएं जो सिक्योर, अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल हो। और मैं धन्यवाद देता हूं NGT के सभी साथियों को जिन्होंने इस 2 दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंतन का विषय है। और जब हम किसी चीज की चिंता से निकलकर उस पर चिंता करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है। साथियों, ये वह क्षण है जब जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना का विषय बन गया है। और आज इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर, जहां द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स थीम पर पिछले 2 दिनों से विचार विमर्श हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसमें भी यही भावना प्रमुखता से सामने आई होगी। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है। ये हमारी उस पुरानी सोच का आधुनिक इंस्टीट्यूशनल रूप है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है। साथियों, भारत आज तेज गति से विकास और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने चुनौती केवल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का नहीं है बल्कि उन्हें इस तरह पूरा करने की है कि विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण के साथ संतुलन भी। पावर तथा हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्रीज की जिम्मेवारी संभालते हुए मैं इस चुनौती को बहुत करीब से देखता हूं। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, हमारी बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। मई में लगातार 4 दिन तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस वर्ष 21 मई को यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर अर्थात 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बढ़ते हुए भारत को अधिक बिजली चाहिए, अधिक आवास चाहिए, बेहतर मोबिलिटी, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साथियों, एनर्जी सेक्टर में हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2026 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 304 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इसमें सोलर एनर्जी अकेले लगभग 168 गीगावाट है। आज हमारी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 55% नॉन फॉसिल सोर्सेज से है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर और लगभग 6 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पावर सेक्टर में 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी का जो लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था, उसे जून 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी संस्कृति भी। अब इसी सोच को हम अपने शहरों के विस्तार और विकास में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। आज हम जो शहर बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम आगे शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड लेकर आए हैं। अमृत 2.0 के माध्यम से हम शहरों में वाटर सिक्योरिटी और सीवरेज सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी हमारे अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश के 29 शहरों में मेट्रो और RRTS ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लगभग 1170 किलोमीटर नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और करीब 1000

0: 13 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आज हम मेट्रो के जहां तक विषय है, दुनिया के तीसरे बड़े देश में आ चुके हैं। हमारे से पहले केवल चाइना और यूएसए है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 2 वर्ष में हमारा स्थान दूसरा हो जाएगा, हम यूएसए से भी आगे निकलेंगे। इसी के साथ देश में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 25.5 लाख ईवीज रजिस्टर्ड हुए, और कुल व्हीकल सेल्स में ईवीज की हिस्सेदारी 8% से अधिक रही है, और ये सब हमारे साझा प्रयास और चिंतन का ही परिणाम है। साथियों, आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जब हम जब तक जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन हम इसे अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली के नजरिए से देखेंगे, हमें इसके समाधान मिलने लगेंगे। साथियों, समस्या जलवायु परिवर्तन की नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार है। जिस रफ्तार से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस गति से कोई भी जीव उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है। सवाल बस इतना है कि हम इस परिवर्तन की दिशा में अपनी भागीदारी सकारात्मक रखते हैं या नहीं, या नकारात्मक रखते हैं, ये सोच का विषय है। हमारी सकारात्मक भागीदारी केवल पर्यावरण को नहीं बचाएगी, बल्कि हमारे भविष्य को भी बचाएगी। आइए, इसी भावना के साथ हम विकसित भारत और सस्टेनेबल भारत की ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः आप सभी को इस सार्थक और सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं, और मुझे आप सभी के बीच आने और इस चर्चा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: ये थे माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी। आपने विकास और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला।
2: मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड भारत, अ सस्टेनेबल भारत इज इंडिया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इमेंस, कवरिंग ऑल द एरियाज विद आवर पावर्स टू कीप the environment protection to be of utmost importance. Now, it's the time for the chief guest of this international conference, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, to address the August gathering.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट्स के सभी जजेस, देश विदेश से आए सभी डिग्निटरीज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सभी स्वजनों, सभी को नमस्कार। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित इस आयोजन में अनेक देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधि विद्याओं और पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रिय प्रमुख स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उनकी समर्पित टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पर्यावरण से जुड़े लीगल मैटर्स ने एनजीटी में की विशेष भूमिका है। मुझे बताया गया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी संख्या में विवादों का त्वरित निपटारा किए हैं। देश में नदियाँ, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल ने एक प्रभावी कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर विकसित किया है, ये सराहनीय है। ये आयोजन एनजीटी के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श करने की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, हाल

के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है। ये सर्वविदित है कि क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पहले से अधिक तीव्रता और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सामने आ रहा है। फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी क्लाइमेट चेंज गंभीर प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसी जटिल और अनिश्चितता चुनौतियों का सुनिश्चित प्रकार से सामना करने के लिए नीतियों और कार्रवाई का एक संगठित ढांचा आवश्यक है। ऐसा व्यवस्था जिसमें केवल सरकारी और कानूनी विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि वे समुदाय भी सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए जिनको क्लाइमेट चेंज सर्वाधिक प्रभावित करता है। ग्रामीणों और वनवासी समाज, छोटे किसान, महिलाएं तथा अन्य वल्नरेबल कम्युनिटीज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं को पड़ता है। देवी और सुजन, दुनिया की अधिकतर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के पास सदियों से संजोया हुआ पारंपरिक ज्ञान हुआ करता है। प्रकृति के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ साथ रेजिलियंस और क्लाइमेट अडॉप्टेशन उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। मेरा बचपन सुदूर ग्रामीण अंचल ने बीता है। प्रकृति से जुड़कर जीने की जनजातीय समाज की सरलता और रेजिलियंस को मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं कभी कभी देती हूँ, आज भी उसको दोहराना चाहती हूँ। मेरे पिता घर में खाना बनाने के लिए पास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाते थे। लकड़ी को जलाने के लायक बनाने के लिए और एक बार उसको घर में उसको कटना पड़ता है। जो उन्हें कटना शुरू करते हैं उसके पहले उसको नमन करते हैं। मैं बहुत बार देखा, मैं छोटी थी तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये तो सूखा है, ये सूखा लकड़ी को क्यों नमन करते हैं। मैं एक दिन पूछा कि पिताजी ये तो सूख गया है, हम इसको जलाने वाले हैं, तुम नमस्कार क्यों करते हो। समझ में आ रहा है कि एक जिंदा पेड़ को कटने से वहाँ से खीर निकलता है और उस और जिंदा होता है, ये मुझे समझ में था। लेकिन ये सूखी उन्होंने नहीं, आज वो सूख गया फिर भी मेरे हम लोगों के काम में आ रहा है, हम लोगों का सेवा में काम में आ रहा है, जो एक जिंदा था, जो एक जिंदा था वो हवा दे रहा था, हम ऑक्सीजन दे रहा था, अम्लोजन हम कहते हैं, अम्लोजन दे रहा था। इसके जोड़े, इसके पत्ता, इसके छल्ली को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसके फूल फल हम खाते थे, इसके पेड़ को हम घर बनाते थे। तो आज वो बूढ़ा हो गया फिर भी हम लोगों का सेवा करता है। इसलिए इससे ही आपको पता चलता है जनजाति के लोग कितने संवेदनशील अपने प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति। पेड़ पौधा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को मेरे गांव लेकर गई थी, उनको ऐसे नहीं कि मैं गांव बहुत सुंदर चलिए देखिए, ऐसे नहीं, जनजाति के लोग कैसे पेड़ पौधा को पूजा करते थे। आज भी हम कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई

कोई फोटो हम बनाते नहीं, हम पेड़ पौधा को ही पूजा करते हैं। एक जाहिरा कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ रहता है, हम साल में जैसे सालों में 12 मास में 50 पर्व होता है, ट्राइबलों का भी होता है, लेकिन वो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। सामूहिक रूप में गांव के बीच में एक रहता है ऐसे जगह जहाँ पेड़ सूखा पेड़ को नमस्कार करते हैं, और गांव का अंत में जाहिरा रहा है। सभी गांव में जितने भी संथाल गांव हैं, वैसे बहुत सारे ट्राइबल, जितने शेड्यूल लिस्ट में, संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जितना ट्राइबल सूची में है, जितने ट्राइबल लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ट्राइबल जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आज उसको वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, हम आदिवासी, पहले से हमको सिखाया गया हम आदिवासी हैं, आदिम आदिवासी, तो आज भी जंगलों को पूजा करते हैं, आज भी पेड़ पौधा पूजा करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहाँ, नमन किए, उनका कोई बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारे जगजमक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अरवा चावल और नमन, आज भी वो मानते हैं। तो और ये एक कहानी नहीं है, हम जो 5 एलिमेंट्स कहते हैं उसको पूजा करते हैं, केवल पेड़ को नहीं पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजा करते हैं। आज भी हम लोगों का बड़ा वाला जो ठाकुर जी है वो मारंग बुरु मीन्स सबसे बड़ा पहाड़ के अधिकारी, उसका नाम कोई नहीं है लेकिन हम बड़ा वाला पहाड़ आज भी पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं। इसीलिए मैं घर पे सबसे बड़ी थी, घर के पास में जो जमीन है, जमीन पिताजी के साथ में जाती थी। पिताजी जब हाल चलाते थे या फावड़ा मारते थे, उसके पहले धरती को नमन करते थे। मैंने बोले तुम क्यों करते हो, मैं बार बार मैंने देखा, उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, फावड़ा मारते हैं, हम लोगों के आवश्यकता के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन धरती के ऊपर भी अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारे चीज़ें वहाँ रहते हैं, बास करते हैं। हम लोगों को हाल चलाने से, फावड़ा मारने से उन लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए मैं धरती माता को नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। विनम्रता की ये भावना हमारी संस्कृति में रची बसी है। ये मनुष्य और प्रकृति के मूलभूत संबंधों को समझदारी से स्वीकार करती है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। मुझे बताया गया है ऋषि मुनि जो कि पेड़ पौधा धरती आकाश जीव जंतु से भी बातें करते हैं, करते थे। इसीलिए उस टाइम एक ऋषि कहते हैं जो ये तो वेद की वाक्य है, यत्ते भूमे बिखनामी क्षिप्रं तदोपि रोहतु। इट मीन्स ऋषि जी कहते हैं, जब पृथ्वी को कहते हैं मैं तुमसे जो कुछ लेता हूँ उसे शीघ्रता से लौटाने के लिए प्रयत्न करूँगा। इसीलिए हम अभी जिस युग में जीते हैं, मैं जो छोटी थी जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन आप वो नहीं हैं। उन दिन भी, उसी दिन में भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, लकड़ी आके जलाते थे, लेकिन आज हम पत्ता का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस शुरू किए हैं, जो हमको जिंदगी जीते हैं। मुझे लगता है इसको कम कर देना चाहिए। पत्ता को हम साल भर बार बार तोड़ेंगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा, इसीलिए उसको
उसको

जीने देंगे तो हम लोगों को भी जीने देंगे, क्योंकि आप साल भर पत्ता तोड़ेंगे तो वह कैसे जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस, हम वो लोग साइंस के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये लोग जिएंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहते हैं कि पत्ता से और पेड़ के लिए खाना बनाते हैं, तो फिर वो पेड़ को ही बार बार तोड़ा जाए तो पेड़ कैसे बचेगा। आज युग बदल गया है, हम लोगों के पास गैस है, हम लोग गरीब लोगों को भी आज पक्का घर दिया जाता है, तो जंगल क्यों कम होता है। इसीलिए कहते हैं सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले आप परिवर्तन हो जाए तो धरती आपे आप परिवर्तन। ये सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट अडेप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेबल की भी अफोर्टेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं, उसमें फॉरेस्ट की अफोर्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अफोर्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को अडेप्टेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलेंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये तकनीकी रूप से फिजिबल भी होनी चाहिए। मुझे बताया गया है सम्मेलन में ऐसे अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक विज्ञान और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को साथ जोड़ना। रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्डम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों और स्वजनों, भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है

विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पत्र

0: का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: Request you all to please rise.
2: And now it's time for the national song and the national anthem. That'll be played by the Rashtrapati Bhavan Military Band.

0: वादन कर रहे हैं और धीरे धीरे मंच से प्रस्थान सभी गणमान्य व्यक्तियों का.
1: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combine science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000 years. As stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratnaji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth we learn patience and steadiness, from air broad-mindedness and adaptability, from fire warmth and energy, from sky equality, and from water purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future, for all of humanity.
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया, ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारे इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके, जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए श्री कमल सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं. आइए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं.
2: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है. आइए सुनते हैं फिल्म संगीत.

0: जय हिंद।
1: इसी के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान के लिए तैयार हैं। सभी लोग खड़े होकर उनको अभिवादन

किशोर कुमार को आपने सुना। फिल्म का नाम था शाहिब। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो कम से कम बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। और आज है विश्व सफाई दिवस। हर वर्ष 20 सितंबर को ये मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, दुनिया भर के ठोस कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना और स्वच्छ बनाने का है। मुख्य फोकस खाद्य अवशिष्ट पर है, जिसकी आधिकारिक थीम स्वच्छ थालियों से स्वच्छ शहरों तक। इस का मुख्य उद्देश्य हम अपने आप से ही कर सकते हैं। कहीं भी जाएं, सबसे पहले अपने हाथ धोएं। खाना खाने से पहले बिल्कुल ऊपर से नीचे से अपने हाथों को साफ रखें, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया किसी भी रूप में अगर शरीर में अंदर प्रवेश करता है तो बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। और संयुक्त राष्ट्र भी इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज के दिन को समर्थन देता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सड़कों पर कचरा न फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, गीले और सूखे कचरे का अलग अलग रखें और उसका प्रबंधन करें। साफ सफाई होगी तो शरीर और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। अपने घर, स्कूल और आसपास के स्थान को भी हमेशा स्वच्छ रखें, कूड़ेदान का उपयोग करें। पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो हम स्वच्छ वायु प्रवेश सांस लेने में करेंगे। वो भी एक आजकल एक ऐसी समस्या है कि वायु प्रदूषण भी बहुत खतरा है। हमें कम से कम वाहन कम से कम चलाएं, नियमित व्यायाम करें, प्रतिदिन नहाएं, अपने आप को स्वच्छ रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहें। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम खुद स्वस्थ रहेंगे और अपने देशवासियों के लिए भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा करेंगे। ये बात हुई विश्व सफाई दिवस की। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दोस्ताना में। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस, आप सभी जानते हैं कि यह भी 20 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ FISU के प्रस्ताव पर यूनेस्को द्वारा इसे 2015 में स्थापित किया गया था। पहला आयोजन वर्ष 2016 में मनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है, उच्च शिक्षा संस्थानों और सामाजिक शारीरिक शिक्षा और खेलों के महत्व को बढ़ावा देना तथा छात्रों और शिक्षकों के बीच खेल संस्कृति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2026 में इसे दिवस को 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, जिसके तहत वैश्विक आयोजनों के साथ साथ विश्वविद्यालय समुदाय भी इसमें भाग ले रहा है। ये तो बात हुई कुछ विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस के बारे में, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था सागर। और अब बात करते हैं डॉक्टर एनी बेसेट की पुण्यतिथि के बारे में, जो 20 सितंबर को मनाई जाती है। उनका निधन 20 सितंबर 1933 को अडयार मद्रास चेन्नई में हुआ था। 1 अक्टूबर 1847 को लंदन ब्रिटेन में हुआ था आपका जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। भारत में स्वशासन की मांग को तेज करते हुए आपने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। आपने वाराणसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीओसी केंद्र बना। भारत में अपने विचार को प्रचार के लिए आपने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्र भी निकाले। आपने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक आधी जनसंख्या महिलाएं अंधकार में रहेंगी, तब तक

कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। भारत की में महिलाओं की शिक्षा और उनके बौद्धिक विकास पर जोर दिया गया। बाल विवाह अन्य सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ आपने आवाज उठाई। महिलाओं को संगठित करने और उनके अधिकारों की मांग के लिए भी आपने अपने विचार रखे। एनी बेसेंट मूल रूप से ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड में रहने वाली थी और आपका परिवार आयरिश मूल का था। ये बात हुई डॉक्टर एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी, आपकी पुण्यतिथि के बारे में। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

0: पावन कदम।
1: और आप देखिए ना, पानी नमक की जो खेती होती है वो एक व्यक्ति की खेती नहीं होती है, पूरे परिवार की सन्नद्धता उसमें होती है। पूरे परिवार को पानी मिल जाए ये कितनी बड़ी बात होती है, जीवन रक्षा की बात हो गई।
0: आइए सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए।
2: गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल वर्ष 2001 से 2014 के दौरान जल संरक्षण को राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। उस समय सरकार ने पानी की कमी और गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए बारिश के पानी को रोकने, भूजल रिचार्ज करने और नर्मदा के पानी को सूखे क्षेत्रों तक पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में जल संरक्षण के लिए चेक डैम, तालाबों की गहराई बढ़ाने और अन्य जल संचयन संरचनाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किया गया। गुजरात के नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग के अनुसार मार्च 2013 तक राज्य में 76,477 चेक डैम बनाए गए थे। विभिन्न योजनाओं को मिलाकर जल संसाधन विभाग के तहत चेक डैम की कुल संख्या 88,312 तक पहुंच गई थी। चेक डैम का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर समुद्र में जाने से रोकना था। इनसे पानी कुछ समय तक जमा रहता है और धीरे धीरे जमीन में उतरता है। इससे कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर बढ़ाने तथा सिंचाई की सुविधा सुधारने में मदद मिलती है। इस अभियान में सरदार पटेल सहभागी जल संचयन परियोजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सरकार के साथ स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं और लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस मॉडल के तहत सरकार और लाभार्थी मिलकर चेक डैम तथा अन्य जल संरचनाएं तैयार करते थे। गुजरात की दूसरी प्रमुख योजना थी सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य मध्य और दक्षिण गुजरात के अपेक्षाकृत अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को उत्तर गुजरात के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुँचाना था। योजना में सिंचाई, जल संचयन और पेयजल तीनों पर ध्यान दिया गया। इस योजना के तहत लगभग 332 किलोमीटर लंबी सुजलाम सुफलाम स्प्रेंडिंग नहर विकसित की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक आधिकारिक जानकारी में कहा गया था कि सुजलाम सुफलाम योजना के तहत तालाबों की गहराई बढ़ाई गई और लंबे रिचार्ज चैनल बनाए गए ताकि बारिश का पानी समुद्र में ना जाए और भूजल का स्तर सुधरे। इसके अलावा नर्मदा परियोजना को आगे बढ़ाना भी गुजरात की जल नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका लक्ष्य सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल पहुंचाना था। बाद के वर्षों में नर्मदा जल को बड़ी संख्या में तालाबों और जलाशयों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी विकसित की गई। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात का जल संरक्षण मॉडल तीन प्रमुख आधारों पर टिका था: बारिश के पानी का संचयन, भूजल का पुनर्भरण और बड़े जल स्रोतों से सूखे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना। चेक डैम, तालाब, रिचार्ज नहरों और जन भागीदारी के जरिए राज्य में पानी की समस्या से निपटने का एक व्यापक प्रयास किया गया।
0: अशोक जी, एक समय था जब गुजरात सूखा प्रभावित क्षेत्र था और पीने के पानी का 80% हिस्सा भूजल निकालकर पूरा किया जाता था। और उधर जब बरसात की बात करें तो बरसात के मौसम में नर्मदा का जो अतिरिक्त पानी आता था समुद्र में चला जाता था। फिर लाई गई सौसरी नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना यानी सौनी योजना, और इसने गुजरात विशेषकर जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसकी तस्वीर आप क्या मानते हैं किस तरह से बदल दी।
3: वाटर की समस्या में, वाटर सिक्योरिटी में दो चीज प्रभावित करती है, एक तो वाटर क्वांटिटी और एक वाटर क्वालिटी। जैसे आपने बताया वाटर क्वांटिटी की कमी थी वहां पे कच्छ के एरिया में, तो नर्मदा डैम तैयार करके उसके पापा वहां पानी ले लाया गया था। उन्होंने उस समय ये जो आपने बताया सौनी योजना शुरू किया था, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम, उसमें बेसिकली वो नर्मदा के एक्सेस वाटर को, फ्लड वाटर को तकरीबन 100 से ज्यादा डैम्स बना के उसमें स्टोर करने की कोशिश की थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो गया था। उस समय आंकड़े बताते हैं कि 77% इंक्रीज इन इरिगेशनबल एरिया हो गया और ऑलमोस्ट 55% ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो गया था। तो ये सक्सेसफुली वहां पे इंप्लीमेंट होने के बाद एज ए मुख्यमंत्री ही अंडरस्टूड दी वैल्यू ऑफ सेविंग गुड वाटर एंड कलेक्टिंग गुड वाटर। तो रेन वाटर जो आप बोलते हैं ना, बाद में एज प्रधानमंत्री उन्होंने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया था, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, ये तो जन भागीदारी से के, तो टू और थ्री

0: इम्पॉर्टेंट जो पहलू है इनके जो वाटर के अप्रोच में, एक तो जनभागीदारी है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते थे कि जल आंदोलन या जन आंदोलन होना चाहिए, सबको मिला के काम करने से ही फायदा होता है। एंड सेकंड वन वाज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ये तो हम डैम बनाते हैं, नर्मदा डैम उन्होंने कम्प्लीट किया था और इनॉग्रेशन किया था, और उस समय हम मानते थे कि बड़े बड़े डैम ही हमारा मॉडर्न इंडियन का टेम्पल्स होता है। बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनवायरमेंटली बहुत इश्यूज होते हैं, सबमर्जेंस का इश्यू होता है, एंड कभी कभी डैम्स जो हम जिसके बेसिस में हम बनाते हैं उतना फुलफिल नहीं होता है। बट जन भागीदारी से और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से जब हम पानी का संचयन करने का काम शुरू करते हैं, देन एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व। ये कैस्टोरेन एग्जाम्पल है यहाँ पे।
1: जी जी।
0: सो जहाँ पे बोलता है कि जो भी बारिश, जितने भी बारिश आपके घर में, खेत में, कहीं भी आते रहते हैं, उसको संचय करके रखेंगे तो सबकी भागीदारी भी होता है, और जहाँ पे पानी बरसते वहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें थीम ये था कैस्टोरेन, वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स। तो सबका डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर स्टोरेज, उन्होंने ये गुजरात में देखा था और यहाँ पे देश भर में लागू किया था। और आंकड़े बताते हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 1 बकरानंगल डैम का जो 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी पिछले 5 साल में जनभागीदारी से संजय कर
1: संस्टोर हो चुका है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अमरेंद्र जी, आपसे जाना चाहूँ, हम सोनी योजना की बात कर रहे थे, तो सोनी जैसे जो बड़े वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट हैं, उसको आप जमीनी स्तर पर जल संरक्षण के साथ कैसे देखते हैं?
2: देखिए, गुजरात ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चेक डैम्स की जो बात अभी हुई, फार्म पॉन्ड्स और रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बनाए गए, तो चेक डैम केवल पानी रोकने की संरचना नहीं है, मूलभूत जो बात है वह है बहाव की गति को कम कर देना और भूजल में रिचार्ज करना। देखिए, कुछ पानी तो वाष्पीकरण होता है, लेकिन ज्यादातर पानी, एक 10 फीट तालाब है गहराई का, तो उसमें 1.5 फीट पानी नीचे जाता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक धारणा है और ये सच्चाई भी यही है। सोनी योजना के साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है कि इसका उद्देश्य नर्मदा प्रणाली के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों और सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना रहा है, और इसको बिल्कुल आम भाषा में यदि कहते हैं तो यह है नर्मदा के उपलब्ध पानी और पानी की कमी झेल रहे सौराष्ट्र के बीच में एक जल सेतु का काम किया है, और ये पूरे भारत में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। तो कोई योजना राज्य से इतनी ज्यादा प्रेरक हो जाए, ये सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। और गुजरात का अनुभव ये बताता है कि वाटर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जो आप भेजते हैं, तो उसके साथ साथ जल संरक्षण, जल संवर्धन और उसके वास्तविक उपयोग की बात होती है। पानी इकट्ठा कर लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, रन ऑफ वाटर को आप रोक ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, आने वाला समय जो भविष्य जो है वो यही है कि वाटर बजटिंग का अब जमाना आ गया है, कि कैसे आप उन पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा बचा कर रखते हैं और कितना अधिकतम उपयोग करते हैं। ये गुजरात की ओर से दिया गया, पूरे राष्ट्र को एक दिया गया बहुत बड़ा उपहार।
1: बिल्कुल,
0: आई कैन सप्लीमेंट दैट, आंकड़े बताएंगे तो 115 डैम्स में पानी भरा गया था, और ऑलमोस्ट 1,84,000 चेक डैम्स और 3,27,000 फार्म पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया गया था। इतना बहुत बड़ा संख्या है, एंड जैसे आपने बताया ये जो फार्म पॉन्ड्स और चेक डैम से जल स्तर भी बढ़ता है एंड वो सबके लिए यूजफुल भी होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे गुजरात के जब भूजल की हम बात कर रहे हैं, तो भूजल का जो बहुत प्रयोग होता था, पानी की कमी थी, जल संकट था, लेकिन जब सोच बदली और इसका दोहन कम किया गया, तो गुजरात विशेष रूप से जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में भूजल स्तर का जो स्तर है तो उसे ऊपर उठाने में एक योजना शुरू की गई, सुजलाम सुफलाम। तो ये किस तरह से कारगर सिद्ध हुई?
0: सुजलाम सुफलाम अगेन, दैट इज अगेन ए वेरी इनोवेटिव स्कीम जो वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया था, एंड उसमें काफी हद तक पर्टिकुलरली इन नॉर्थर्न गुजरात में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करके लोगों जन भागीदारी से वाटर टेबल बढ़ाने का कार्यक्रम किया, वो वेरी सक्सेसफुल भी रहा था।
1: जी हाँ। तो अगर अमरेंद्र जी आपसे जानना चाहूँ, जी सुजलाम सुफलाम है और चेक डैम्स की हमने खैर बात ही की है, तो ऐसे प्रयासों से गाँवों में क्या वास्तविक बदलाव पैदा होता है, और कई ऐसी कहानी या उदाहरण आपको याद हो जो आप इस उसको बदलाव का उदाहरण मानते हैं?
2: पूरा गुजरात ही बदलाव का उदाहरण है, लेकिन आप भौगोलिक रचना देखें, संरचना कहिए, तो उत्तरी गुजरात का जो हिस्सा है वो भूजल के मामले में कमजोर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दोहन हुआ उसका पहले से ही, क्योंकि उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां भी पानी की समस्या रही है। अब देखिए सुजलाम सुफलाम जो योजना है ये जल प्रबंधन को स्थानीय गांव की सीमा से बाहर निकालकर, एक तो गांव का पानी हो गया लेकिन उस सीमा से बाहर निकालकर रीजनल

0: लेवल पे क्षत्रिय स्तर पर देखने की एक कोशिश की गई है, और ये कोशिश ही नहीं, एक सफल कोशिश है, उपलब्ध जल को, उपलब्ध पानी की वाले इलाके को वहां तक पानी पहुंचाना, चाहे वो पाइपलाइन से हो या नहर से हो या जलाशय से हो जो
1: जी
0: बनता है कृत्रिम जलाशय जो है उससे, और रिचार्ज जैसी व्यवस्थाएं सुजलाम सुफलाम में है। नाम से ही लगता है कि हाँ हरितिमा है, हरियाली है, तो ये सफल रही है योजना। और इसका मूल संदेश जो रहा है, सफल संदेश है, वो यही कि जहां पानी उपलब्ध है उसे वहां तक पहुंचाया जाए जहां उसकी जरूरत अधिक है। बहुत बड़ी बात है, संवेदनशीलता है। देखिए पानी को लेकर जब तक आपके अंदर में हार्दिक श्रद्धा नहीं हो, अंदर संवेदनशीलता नहीं हो, ये सरकार के लेवल पे ही चीजें नहीं होती हैं। सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया और लोगों को बताने में, लोगों को जताने में सरकार सफल रही है कि पानी की जरूरत जो है उसके आखिरी प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता आप हैं। आम जनता ने इस बात से, क्योंकि पानी की परंपरा रही, आप उदाहरण देखें तो पानी की परंपरा रही है, तो आम जनता तक उनके ज्ञान को, लोक ज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करना
1: बिल्कुल सही
0: एक बहुत बड़ी बात है। पानी का दुरुपयोग वहां गुजरात में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, राज्य के कम से कम 17 जिलों में मैंने देखा है, उस तरह की स्थिति नहीं है कि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो खेती में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग खेती में है, वहां पर बचाकर पानी को रखना, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, ये सुजलाम सुफलाम योजना की एक बहुत बड़ी सफलता है। और इस तरह से जो योजना सफल रही है, इसमें सरकार और आम जनता का सामंजस्य रहा है। और किसी एक इलाके की बात आप क्या करेंगे, उस पूरे इलाके में, गांव के गांव आज हरियाली में, हरियाली का आनंद ले रहे हैं।
1: बिल्कुल पारंपरिक, आपने जैसे जल संरक्षण की बात की, तकनीक होती थी हमारे देश में, इतिहास रहा है, जैसे टांका है, बावड़ी है, कुंड है, कुएं हैं, तालाब, लेकिन बीच में ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। और अगर देखें तो कई क्षेत्रों में इसके, आपने कहा, पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में ऐसे उपायों का, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हुए हैं उनका जिक्र किया है, तो इन प्रयासों में और तेजी आई है।
0: बिल्कुल, और गुजरात ही नहीं, गुजरात के लोगों को प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि देवास में क्या हो रहा है, किसी और इलाके में क्या हो रहा है। वहां पर भी एक आम जनता की जो जिम्मेवारी बनी और जिस तरीके से उन्होंने उसका तरीके से निर्वाह किया, तो पूरे मुल्क को, पूरे देश को वो बता रहे हैं कि पानी आपका अपना संसाधन है, इसे बचाइए, इसे तरीके से खर्च कीजिए और इसे बढ़ाइए।
1: जी अशोक जी, आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि जल संरक्षण में कई मुख्य बिंदु हैं और उनमें से एक है जन भागीदारी, तो ऐसे ही दिशा में गुजरात में भी कदम उठाए गए। जैसे हम वास्मो और पानी समितियां की बात करते हैं, तो उनके माध्यम से जल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को महत्व दिया गया। तो इस मॉडल में ऐसा क्या रहा जिसने पानी की व्यवस्था से जो गांव है और जो समुदाय है उनकी भूमिका को इतना मजबूत कर दिया?
2: देखिए, ये एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने। हम क्या करते थे, सब जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते थे, ये सरकार का काम है, हमारा काम नहीं, हमारा काम उपयोग करना है, दैट इज दी एटीट्यूड। बट यहाँ पे हैबिटेशन वर्स ड्रिंकिंग वाटर कमिटीज या जो पानी पंचायत और वाटर यूजर्स के एसोसिएशन बनाया था, उसको वाटर के मैनेजमेंट में हिस्सेदार बनाया था मोदी जी ने उस समय SCM, तो लोगों को भी लगा कि देखो काम हो रहा है, हमारे भी एक हिस्सा है, हमको भी इन्वॉल्व करना है, एंड उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया। और ऐसा नहीं कि खाली पेपर में उसको एक जगह पे बिठा दे, तुम यहां बैठो, तुम इसका जो भी है डिसिग्नेशन हो, काम हम करते रहेंगे, डिसीजन हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने जिसको पद पर बिठाया था उसको डिसीजन लेने का भी पावर दिया था और इम्प्लीमेंटेशन का भी पावर दिया गया था। इसमें क्या होता कि एक ओनरशिप आ गया, लोगों को जो भागीदारी से वो आगे आकर पानी की बचत का काम किया, उनको भी लगा कि ये हमारे लिए कर रहे हैं और हमको इसमें इन्वॉल्व होके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे काम करना है, उसने किया गया। तो ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने किया बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कि मोदी जी ने पानी को अनेक रूप होता है, मतलब पानी बहते पानी नदी में जाते हैं, वो स्टैगन वाटर तो लेक में होते हैं, कुएं में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, फिर रेन वाटर है, वो बारिश गिरते रहते वो रेन वाटर होते हैं, आइस होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, और वेस्ट वाटर भी होते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी जो इंडस्ट्रियल में वेस्ट में जाता था और उसको ट्रीट करके हम दूसरे तरफ प्रयोग कर सकते थे। तो ये एक नया सोच था और सर्कुलर इकोनॉमी, उन्होंने वहां पे भी ये रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर का भी यूज किया था। तो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज पर फिक्स किया गया कि आपको जो पानी यूज करते हैं उसका रिड्यूस करो, रिड्यूस नहीं कर सकते उसको कम से कम ट्रीट करके रीयूज करो। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन कम करने का और सरफेस वाटर एक्सप्लॉयटेशन

0: करने का जो प्रयोग उन्होंने किया दैट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल।
1: रीयूज ऑफ वाटर के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जब मैं फिलहाल समितियों की जन भागीदारी की बात कर रही हूँ तो जो पानी समितियां जैसे गांव जल और स्वच्छता समिति की जो अवधारणा है उसे आप किस तरह से देखते हैं अमरेंद्र जी? और अगर हम देखें तो क्या पानी की व्यवस्था तभी टिकाऊ बनती है जब गांव खुद उसके संचालन और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है स्वयं उठाए?
2: देखिए, गोंड लोगों का जब शासन था मध्य प्रदेश में तब से तालाब की और पानी की एक परंपरा रही है जो इतिहास मैंने पढ़ा है। गुजरात में जो प्रयोग हुआ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसे हम एक वाक्य में कहें तो जल सुधार कह सकते हैं
1: जी।
2: पानी को सरकार और आम जनता की साझेदारी की जो संस्कृति विकसित हुई है वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। ये जो जल सुधार का जो महत्वपूर्ण प्रयोग रहा है उसमें इस बात का जोर रहा है कि ग्रामीण पेयजल केवल सरकारी इंजीनियरिंग का विषय नहीं रहे
1: जी।
2: बेयरफुट प्लम्बर पैदा हुए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अमूमन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैंने देखा है उन इलाकों में, कई गुजरात के कई रिमोट एरिया में देखा कि वहां बेयरफुट प्लम्बर हैं। जल का उनको ज्ञान भी है, वो लोक ज्ञानी भी हैं और गांव को स्वयं अपनी जल व्यवस्था करनी है जिम्मेवारी सौंपी गई, उत्तरदायित्व। सारा काम नौकरशाही कर दे और सरकार कर दे नहीं, और जब तक उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक आप जल जैसे संसाधनों को एक व्यवस्था में लाकर उसे अनुशासित नहीं कर सकते हैं। इस जल व्यवस्था में जो कम्युनिटी ओनरशिप जिसकी मैंने बात की है और स्थानीय जन भागीदारी और जवाबदेही, यह एक अवधारणा मजबूत हुई है। गुजरात एक बहुत बड़ा प्रेरक रहा है इस मामले में और यही सोच बाद में राष्ट्रीय स्तर, जो हमारे डिस्कशन की शुरुआत जो हुई और आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आया, यह वही योजना जो बाद में जल जीवन मिशन में दिखाई देती है जहां पानी समिति को ग्राम पंचायत के उप समिति के रूप में संस्थागत भूमिका दी गई। देखिए, पानी पंचायत तो उड़ीसा में भी देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अनुशासित ढंग से लाकर और उसका आउटकम निकालना, उसका रिजल्ट निकालना इतना आसान काम नहीं था। गुजरात इस मामले में अग्रणी जरूर है।
1: बिल्कुल, और जो नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है। अशोक जी, अगर हम अभी हम रीयूज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है और पानी को दोबारा उपयोग में लाना, अगर आम जनता को बताए ये कितना महत्वपूर्ण है और वे क्या कर सकते हैं इस दिशा में?
0: रीयूज ऑफ वाटर, ग्रे वाटर इज ए इम्पोर्टेंट मुद्दा है, बट आई वुड से दैट मोर देन रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, हमको व्हाट वी शुड लुक एट इज रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर। स्वेज वाटर को भी ट्रीट करके वापस उपयोग ला सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में 85-89% वाटर यूसेज एग्रीकल्चर में होता है, वेस्ट में होता है, तो उस पानी को एक अच्छे लेवल पर ट्रीट करके हम सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, तो जो एक्सट्रैक्शन फ्रेश वाटर रिवर्स या और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होते हैं वो कम होता है। भले अब व्हेन इट कम्स टू दी ग्रे वाटर, ग्रे वाटर जनरली नॉट स्वेज वाटर, वो जो हमारा घर का पानी ये सब को रीयूज करने का है, उससे ज्यादा सेविंग ज्यादा होता नहीं, बट हर बूंद जो बचा है वो अच्छा है
1: जी।
0: उसी तरफ से हमको इन्वॉल्व करना है, और क्योंकि रीयूज ऑफ ग्रे वाटर में अभी जो घरों में प्रॉब्लम है टू रिट्रोफिट डुअल पाइपलाइन ऐसा कुछ करना है, बट अगर इफ वी आर मेकिंग ए पॉलिसी दैट आगे के जो भी हाउसेज आते हैं उसमें डुअल पाइप लगाएं और लोकल एरिया में ग्रे वाटर को ट्रीट करके यूसेस में, लाइक फॉर इरिगेशन पर्पजेज या फॉर आवर लॉन्स के लिए या पानी धोने के लिए कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए ये यूज कर सकते हैं, तो ये जो अच्छे वाटर का जो वेस्ट कर वो कम कर सकते हैं। तो रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीयूज ऑफ ग्रे वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट आई वुड से दैट रीयूज ऑफ ब्लैंक बिगर थिंग, रीयूज ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर फॉर अप्रोप्रिएट पर्पजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जी हाँ, बिल्कुल है, और इसमें जन भागीदारी चाहे वो गांव हो शहर हो सबको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आरओ का पानी जो इतना वेस्ट होता है उसको भी आप बहुत ही आसानी से रीयूज कर सकते हैं। अशोक जी, जल जीवन मिशन मोदी जी की मुझे लगता है कार्यकाल की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और नल से जल पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि गांवों में जहां महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, भर के लाना पड़ता था, तो इस योजना ने उनके समय को, उनके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान कर दिया। और एक आंकड़े के मुताबिक देश के कुल 19 करोड़ 35 लाख से अधिक जो ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से 81% से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति हो रही है। तो आपके अनुसार ये आंकड़े क्या तस्वीर पेश करते हैं?
0: ये एक आई वुड से अनइमेजिनेबल, सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क को अचीव किया है। जब

0: जी 2015 में वो जो स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया था रेडफोर्ट से, दैट वाज गिव अस हेडिंग एज अ वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट, उसमें हम बाद में आएंगे। और जब पानी का जो टॉयलेट्स बन गया और वाटर बॉडीज खराब नहीं हो रहा था, देन ही मूव्ड ऑन टू प्रोवाइडिंग गुड ड्रिंकिंग वाटर टू दी फैमिलीज बी रिलीजियस। देखा जाए तो हर गांव में महिलाओं पर जिम्मेदारी पड़ती है कि वो पानी कहीं से भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के सर पर रखे आए और कुकिंग के लिए यूज करें, वो पानी की जिम्मेदारी उस पर होता है। और महिलाओं को और एक इस वाटर में इम्पोर्टेंस आता है कि वाटर बॉर्न डिसीजेस का प्रभाव भी उस पर भी ज्यादा पड़ता है। बच्चों पे डायरिया केसेस आते हैं और वाटर बॉर्न डिसीजेस का जो भी तकलीफ उठाना पड़ता है वो लेडीज को ज्यादा पड़ता है। इसलिए जब 2019 में मोदी जी जल जीवन मिशन, एक वंडरफुल विजन ऑफ प्रोवाइडिंग जल एट द हाउस ऑफ द वुमन, हाउस फॉर द वुमन, गिव सेविंग दम टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वन, अ ड्रजरी ऑफ वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस, 5-6 किलोमीटर उसका टाइम सेविंग हो गया। सेकेंड, अच्छा पानी, पीने का पानी, पीना योग्य पानी आपके घर में मिल रहा था, तो उनका जो हेल्थ बर्डन जिसकी वजह गंदा पानी की वजह से जो होता था वो कम हो गया, एंड दैट लेड टू द सेविंग्स ऑफ द मनी विच यूज टू गो फॉर फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो द डेज फॉर लेबर लॉस्ट। ये बहुत सारा आर्थिक और हेल्थ और सोशल जो डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट उसको हुआ, दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस। एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली पीपल इन द world, when I had gone to the World Water Conference all in UN, they were not actually willing to believe that have kar paya इतना बड़ा काम कैसे कर सके, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना पड़ता है। और जो आंकड़े बताया आपने 81% अभी कंप्लीट हुआ है, आगे बढ़कर हाउ उसको मैनेजमेंट करने का, उसका जैसे गुजरात में किया था दैट वाटर टैप का, प्लम्बर्स का लोकल करना, ये सब जल जीवन मिशन में का हिस्सा है, एंड दैट वॉज ए ग्रेट सक्सेस।
1: जी अमरेंद्र जी, गुजरात के अनुभव से लेकर जल जीवन मिशन तक, क्या आपको पानी के मुद्दे में एक बदलाव दिखाई देता है जहाँ फोकस पानी पहुंचाने से जल सुरक्षा की ओर बढ़ा है?
2: जी हाँ, राज्य के जो पुराने अनुभव हैं और केंद्र के जल जीवन मिशन ने एक दूसरे में जुड़ाव है, जुड़ गए हैं, और उससे पानी की यात्रा बड़ी सफल दिख रही है। और जहां तक बात आगे के लिए है, तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो जन सहभागिता है और स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन है, इसकी जो अवधारणा जो थी वो बिल्कुल, उसकी संस्कृति जो विकसित हुई, वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की सोच को, जो जल के जो संकाय हैं, जल संकाय जिसको कहते हैं वाटर बॉडीज या जो भी, तो 2019 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पष्ट मिशन का रूप ले, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को आज का नहीं देखना है, आने वाले 25 सालों का देखिए, जो बहुत ही वो चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विश्व के लिए। देखिए अगला विश्व युद्ध पानी के लिए और मिट्टी के लिए ही होगा, तो उसमें ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी। लेकिन शुरुआत जो हुई है भारत में वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और अब ये केवल नल से पानी पहुंचाने की बात नहीं है, चुनौती है नल में नियमित पानी हो, पानी की गुणवत्ता हो और सुरक्षित जल स्रोत हो।
1: जी
2: चुनौती यही है,
1: यही चुनौती है, और इसी चुनौती पर हमें खरा उतरना है, इससे निपटना है। और
2: जितना पानी आप निकाल रहे हैं उतना पानी तो जाना ही चाहिए,
1: जाना ही चाहिए।
2: जी हाँ,
1: और उसमें जन भागीदारी बहुत ही महत्व रखती है। अशोक जी, आपने जैसे मोदी जी के नेतृत्व में वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन मुहिम की शुरुआत की, आपने शुरुआत में इसका जिक्र भी किया, तो आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं?
0: दिस इज अ वंडरफुल डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक वे ऑफ स्टोरिंग वाटर। पहले हमारा सोच था कि हम पानी को जो हम भी बरसते उसको कहीं लेके जाके डैम बना के वहां से फिर पंप करके वापस सिंचाई के लिए यूज करें, बट कैच द रेन टैगलाइन विद वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, पानी जहां बरसते हैं वहीं वहीं को उसी को सेव करना है और ग्राउंड वाटर वहां पे करना है। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का है, बिकॉज हर घर में हर खेत में पानी सेव कर सकते हैं। सेकेंड, पार्टिसिपेशन, हर व्यक्ति, बूढ़ा बच्चा, महिला, मर्द, सब इसमें भागीदारी ले सकते हैं, और अपने घर में, अपने आंगन में जो भी बारिश आते है उसको अगर संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल्स उसका बढ़ जाते हैं और हमारा एनर्जी भी सेविंग हो जाता है, क्योंकि पहले हम देते थे कि ग्राउंड वाटर को पंप करने के लिए मोटर यूज करते थे, 2 HP मोटर, 5 HP मोटर, 10 HP मोटर तक किया। अगर हम वाटर सेव करेंगे तो जल स्तर ऊपर हो जाते हैं और एनर्जी का भी सेविंग होता है। तो दिस इज अ वेरी बिग मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीपल टू सेव कैच द रेन।
1: जी अमरेंद्र जी, कैच द रेन जो मूवमेंट था, मतलब उस दिशा में बहुत ही कदम उठाए गए हैं, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं इस मुहिम के बाद कि लोगों की थॉट में, लोगों के विचारों में, लोगों के प्रयासों में किस

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम था गोरा और काला। और आइए अब सुनते हैं मुकेश को। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकरेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास

0: जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान। योगदान दें। आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान,

0: सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
2: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
3: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
4: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
3: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
5: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का।

0: जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment.

लता मंगेशकर और मनोहर उदास को आप सुन रहे थे फिल्म हीरो में, और आइए आप सुनते हैं फिल्म हिना का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म हिना में। इस गीत के साथ ही सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 9:30 होने को हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: साहित्य कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
1: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
2: घोर बेइज्जती।
3: क्यों? वे बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के चार दिन देखे ही नहीं है।
2: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया। भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
1: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
2: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
3: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जब

0: बांधे।
1: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी।
2: पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ,
3: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
4: अच्छा जोशी साहब, हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे, तमीज की कमीज वाले या हमारी तरह के?
2: ये देशमुख पूछो मत, तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा।
4: अच्छा,
2: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
3: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
2: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
4: अच्छा,
2: हम भले और हमारा काम भला हो, पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा।
3: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
2: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
5: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी।
4: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
2: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
6: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
2: कौन सी लड़की?
6: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
4: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
2: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
4: बता रहा हूँ जोशी साहब,
2: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
4: आप भी ना।
3: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ है।
4: हाँ चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब, जोशी साहब।
2: हाँ बोलो बोलो करने।
4: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना,
7: मिस साने।
4: हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैड है।
2: हाफ मैड?
4: हाँ हाफ मैड।
7: कैसे? तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने? करने का है।
4: अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
6: अरे आखिर हुआ क्या?
4: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर लें, हाँ कहीं दूर भाग जाए, और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस आप ही कहिए, कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो पगली।
3: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो कर्णिक, किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
4: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, हैं? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
7: अरे कर्णिक, वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
3: देख कर्णिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं, तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
4: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
3: तो दीजिए ना सबूत।
4: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
3: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने? कर्णिक सही कह रहा है?
7: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिस साने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
6: क्या कह रहे हो, मिस साने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
4: मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना।

0: ना उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
1: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। एक कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्तों।
2: अरे जोशी जी,
1: मेरे पास आ गए। मैं चलता हूँ।
2: अरे भाई अनारकर।
3: जी सर।
2: जरा इधर आओ।
3: जी सर।
2: ये लो ये फाइल, बड़े साहब के पास ले जाना और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
3: जी अच्छा।
4: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
2: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
4: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ। क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
2: काम?
4: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे। आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
2: किधर? नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
4: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं। यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
2: जी फाइल कहाँ है?
4: ले लीजिए।
2: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
4: कहाँ? ये?
2: हाँ ये और ये जो, हाँ नीचे, ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
4: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
2: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये। जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
4: थैंक यू।
2: नहीं थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस साने, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
4: मिस्टर मांजरेकर, एक मिनट रुकिए।
2: जी
4: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
2: मेरे साथ मगर मैं।
4: चलिए मिस्टर मांजरेकर आइए।
2: जी

0: वैसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर है? नमस्ते।
0: माफ कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं? आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस यार वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाटली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले।

0: तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ, अभी लाती हूँ। ये ले चाय।
1: दीदी।
0: क्या हुआ?
1: दीदी तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
0: हाँ? नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
0: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटनी मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
0: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए, वगैरह वगैरह। क्यों रे, कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
0: ठीक है, लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी, घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
0: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
0: बस रे, तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम, अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
0: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार रे, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन, अब तो शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
0: पगला कहीं का।
1: पगला?
0: अरे
1: कोई
0: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी, ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताऊं, जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
0: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
0: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
0: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
0: ऐसा क्या तुझसे भी पूछा?
1: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
0: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन।
0: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है, बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी, विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
0: हाँ हाँ,
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
0: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है, वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है, आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में 2 साने।
0: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है, बात चलाऊं?
1: लो अभी तो मैं 2-2 साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि 1 साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई।

0: दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
1: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर, पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? वे भावरी के घर हुआ।
0: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
1: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
0: ए लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
1: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से, उसी को लाने के लिए मेरा दूध बनकर चले जाना।
0: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
1: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आजा।
2: Yes?
0: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
2: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है। आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
0: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी?
2: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
0: वो घर पर है क्या?
2: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी।
0: ओह।
2: लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
0: सुरेखा।
2: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
0: थैंक यू।
2: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
0: जी।
2: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
0: ओ।
2: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर, आप भी नहीं खोलना।
0: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
2: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं दीदी कहती हूँ।
0: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
2: ये तो मुझे मालूम है।
0: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
2: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
0: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
2: बस अब वो आती ही होंगी, वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
0: एकदम ठीक।
2: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
0: हाँ।
2: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
0: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊं?
2: देखिए, दीदी कहती है किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए, आपको जाना है तो जाइए।
0: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
2: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? रविवार को छुट्टी होती है।
0: सॉरी सॉरी, भूल गया था।
2: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
0: हाँ।
2: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
0: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
2: हाँ।

0: लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
1: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
0: आपकी भी? बड़ों की भी दीदी होती है?
1: हाँ।
0: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांसरेकर।
1: मिस सानी,
2: आप यहाँ?
1: आप यहाँ?
2: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
1: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
0: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं, तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
2: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मांसरेकर आइए, अंदर आइए।
1: थैंक यू।
2: आइए बैठिए। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया?
1: स्नेहलता मांसरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल, ट्यूटर।
2: स्नेहलता मांसरेकर आपकी?
1: वो मेरी दीदी है।
2: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
1: आपके बारे में।
2: मेरे बारे में क्या
1: सोच रहा था? कि
2: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूं?
1: जी,
2: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
1: मैं समझ सकता हूं, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
2: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
1: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस साने
2: जी,
1: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
2: क्या कहती है?
1: कहते हैं कि आप
2: पगली हैं।
1: जी
2: ठीक ही तो कहते हैं।
1: यानी सचमुच आप?
2: करना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए करना पड़ता है सचिन।
1: मैं समझा नहीं।
2: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलिप्त रहने में आसानी होती है। सोचो अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
1: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
2: मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
1: नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
2: मेरे लिए?
1: मिस साने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
2: और कौन है? बोलो।
1: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी एक बात पूछूं?

0: मुझसे शादी करोगी?
1: सचिन,
0: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
1: आप भी पागल हैं।
0: पागल?
1: हाँ पागल, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
0: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
1: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
0: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं।
1: सचिन,
0: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
1: अभी?
0: हाँ अभी।
1: ठीक है, चलो।
0: लेकिन वहां हंसने का पागलपन मत करना।
1: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
0: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
2: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकरीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, करणिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा मायणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

यह आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वीआर नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नादस्वरम वादन सुनवा रहे हैं। वीआर नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेत मंगला के एक प्रतिभाशाली नादस्वरम वादक हैं। आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ। आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई। नादस्वरम परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण के साथ वीआर नटराजू ने आगे चलकर कई प्रतिष्ठित गुरुओं से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। वीआर नटराजू आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। 25 वर्षों से अधिक समय से वे मंच पर सक्रिय हैं और नादस्वरम की परंपरा के एक समर्पित साधक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। आपकी प्रस्तुतियां अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर हुई हैं। आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रसिद्ध नादस्वरम और तविल विद्वानों के साथ संगत करने का भी गौरव प्राप्त किया है। संगीत के प्रति आपकी

0: निष्ठा और योगदान को अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज की प्रस्तुति में आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। वी आर नटराजू इज एन एकम्प्लिश्ड नादस्वरम आर्टिस्ट from Betamangala in Kolar district, Karnataka. Belonging to a family with a strong and distinguished musical tradition, he was introduced to music at a very young age. His father, Vidwan V. Ramesh, was his first guru and played a significant role in shaping his musical personality. Under his father's guidance, V. R. Nataraju received training not only in Nadaswaram, but also in Carnatic vocal music, developing a strong foundation in the fundamentals of classical music. With a keen interest and dedication towards the Nadaswaram tradition, V. R. Nataraju subsequently pursued advanced training under several eminent masters. V. R. Nataraju is an A-grade artist of Akashvani Bengaluru. His performances have been presented at important platforms. He has also had the privilege of accompanying several celebrated Nadaswaram and Tavil Vidwans across different parts of India. His dedication and contribution to music have been recognized through several awards and honors. In tonight's performance, he is accompanied on special Tavil by S. Sudhakar.
0: V. R. Nataraju aur unke saathi अपने नादस्वरम वादन का आरंभ त्यागराज स्वामी की रचना अभिष्ट वरदा से कर रहे हैं। यह रचना राग हंस ध्वनि और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी बिगिन देयर नादस्वरम रिसाइटल विद अभिष्ट वरदा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग हंस ध्वनि एंड आदि ताला।

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदिताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वी आर नटराजू और उनके साथियों का नाद स्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नाद स्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय यस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सामगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: Continuing their performance, we are Nataraju and Party now presents Sama Gana Priyakaram, a composition of Guru Surajananda set in Raga Keeravani and Mishra Chaputala.

0: वी आर नटराजू और उनके साथ ही अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास सेट इन राग जन सम्मोधिनी एंड आदिताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वीआर नटराजू एंड पार्टी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट
5: क्लाइमेट करने के लिए आवश्यक विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज

0: जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Gargan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, first ever operation of Japanese fighter jet on Indian